मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 आषाढ़ मास की तिथि 29वीं तदनुसार 20 जुलाई 2026 ईस्वी प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला

नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये भजन।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन तृष्णा पर शिवदयाल शर्मा से।
1: तृष्णा, भोगे हुए पदार्थ को पुनः भोगने की इच्छा होती है। शरीर में दसों इंद्रियां पूर्व में उपभोग की हुई वस्तु को बार बार मांगती है। मन में इच्छा होती है, कल समोसा खाया था वैसा ही आज बनाओ, बड़ा स्वादिष्ट था, ये स्वादेंद्री की चाहत है। अमुक की आवाज में वे गीत बड़ा मार्मिक था, बार बार सुनने को जी करता है, वास्तव में यह श्रवणेंद्रिय की इच्छा है। मैं तो अमुक इत्र

0: को पसंद करता हूं, उसको पाने की इच्छा रहती है। क्या करें, आजकल मिल ही नहीं रहा है। यह घ्राणेन्द्रिय की लालसा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्री अपनी भोगी हुई वस्तु को पुनः पुनः भोगने की इच्छा करती रहती है। यही तृष्णा है। और परम विचारक महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा है कि यह संसार तृष्णा है। यदि तृष्णा नहीं तो यह संसार ही नहीं। तृष्णा का अंत ही मोक्ष है। जीव मौजूदा जीवन में तृष्णा के माध्यम से पारलौकिक जीवन के लिए पोटली बांधता है। इस पर भर्तृहरि का एक मार्मिक श्लोक है। वलिभीर मुखमाक्रांतम पलितेनांकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। अर्थात इस क्षीयमान संसार में सब कुछ दिनों दिन क्षीण हो रहा है, घट रहा है। बचपन और जवानी का सुंदर शरीर, मुख की कांति वली पलित अर्थात सफेद बाल होना आक्रांत हो रही है। सनई सनई इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। सब कुछ बूढ़ा हो रहा है, परंतु तृष्णा ही एक ऐसी है जो प्रतिदिन जवान हो रही है। जीवन में एक भ्रमजाल है जो जीव यानी मनुष्य को आलोड़ित करता रहता है। उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति सोचता है मैं यदि उच्च पदासीन हो जाऊं तो फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त करने के बाद क्या ये तीसरी हो जाती है? नहीं, अब तो वह आगे फिर पुनः पदोन्नति प्राप्त करने की होड़ में लगा रहता है। जो उच्च पदासीन है ऐसा प्राप्त करके भी पुनः पुनः उसी की मांग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है। महर्षि अष्टावक्र जी ने यही कहा है कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, कुछ महसूस करने वाली है, तब तक तुम संतुष्ट नहीं हो सकोगे। तृष्णा का अर्थ ही यह है। और चाहिए, और चाहिए, और क्यों चाहिए, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि तृप्ति नहीं हुई इसलिए ये मन अधिक चाहता है। ये मन अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाकर अपने जंजाल में फंसा ही लेता है। क्योंकि तृष्णा ही संसार है और तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष है। अतः तृष्णा को त्यागो और सुखी हो जाओ। सुख की कामना तो सबको रहती है, परंतु सुखी कोई नहीं। शरीर वृद्ध हो जाता है, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। वह तो दिनों दिन तरुणी होती रहती है। यहां पर प्रत्येक वस्तु पदार्थ प्राणी मात्र को एक न एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाना है। संसार परिवर्तनशील है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता। घर बन जाए ये आवश्यकता है, अच्छा बन जाए ये इच्छा हुई, और एक नहीं दो तीन होने चाहिए, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा रूपी अग्नि की लपटें प्रतिपल मनुष्य को जलाती रहती है। हम तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना चाहते हैं तो इच्छा रूपी लकड़ियां डालते रहेंगे तो क्या अग्नि बुझ सकती है? नहीं, वह आग कभी बुझने वाली नहीं है। हमें ईंधन डालना बंद करना होगा। सुख को त्याग दो तो सुख की मजाल नहीं कि वह तुम्हारे पास न आएगा, और सुख को चाहते रहो तो मजाल है दुख तुमसे दूर चला जाए। ये अष्टावक्र जी का उल्टा गणित है। सुख को त्यागो सुखी बन जाओगे, और सुख को मांगो दुखी हो जाओगे। सुख को त्यागो, सुख की तमन्ना मिटी कि सुखी हो गए। अभी यह बाकी है, अभी वह बाकी है, यही संसार बंधन है। और नहीं, यही मोक्ष है। जितना है पर्याप्त है। अतृप्ति अर्थात अशांति, जो तृप्त हो गया उसे मृत्यु का भी भय नहीं।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन तृष्णा पर शिवदयाल शर्मा से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा लवणीय सिंचाई जल का उपयोग। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 310। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पुस्तकों का महत्व, सद्भाव, जल ही जीवन है। इसके अलावा एक वार्ता, मानवीय संवेदनाएं, वार्ताकार होंगी पुष्पा देवी। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कलाकार होंगे सोहन प्रकाश। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार। आपकी फरमाइश पर आधारित गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें दिन के 12:30 पर। दिन के 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा जैविक कार्बन, मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित सविता पूनिया। घर की रसोई से छोटा व्यवसाय, अंगदान का संकल्प, किसी के लिए जीवनदान और सेव के फायदे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सिराई के कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कीटनाशक छिड़काव करते समय सावधानियां, मुर्गी पालन लाभकारी व्यवसाय, बालिका शिक्षा अति आवश्यक और इसके अलावा मौसम और बाजार भाव की जानकारी। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे खेल जगत। 10:30 पर फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मालदोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from the

है, किसान भाइयों पानी झटकर बगे आवे, भट्ठे की माटी में जका तत्व होए बने आपके सागे धोगे ले आवे। किसान भाइयों आपा जको पानी देवा वो लवण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जे आपा लूण वालो पानी आपकी फसलों ने देवांगा तो वो पानी फसलों ने तो नुकसान करेगा ही, आपने खेत की जकी माटी है बिने भी बहुत नुकसान पहुँचावेगो, बिना स्वास्थ्य ने खराब करेगो। किसान भाइयों आजकल आपा जमीनी पानी ज्यादा काम में लेवा, जको न्यारी न्यारी जगह पर न्यारो न्यारो होए, जमीनी पानी ने आपा जद पी के देखा तो बिंगो स्वाद आपा ने किया खारो खारो सो लग गए, जिंगे कारण आपा ने वो खारो लग गए। एर पर कई बार की है पानी पीने में तो मीठो होए पर बिंगा जका घुलड़ा तत्व है वे फसल ने नुकसान करे। कई बार आपा सुना भी आ के फलाना आदमी का पानी तो बहुत बढ़िया है, जमीन भी बहुत बढ़िया है, पर दाना कोनी होए। एर कई जगह की है पानी खारो होए पर वो की फसल माने भी ने तो बीसों के उपज भी बढ़िया हुए। तो आपने आपने पानी की जिकी की समय समय पर जांच करानी चाहिए, इन बात को अपन ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों बात करा पानी लवणीय क्यों हो जे, बिंगा कई कारण है। किसान भाइयों धरती के ऊपर और अंदर जो को पानी है नी, वो चाहे तालाब गो है, नदी गो है या कुआं गो है, सारो बरसात छू ही आवे। मे गो पानी जदे जमीन पर बह गया आवे नी तो आपके सागे की है भी माटी में मिलेड़ा जका तत्व है बने, और दूसरा जका साधना छू एड़ा लवण है बने कि आपस आगे घोल के लिया आवे, जको अपनी माटी ने एरा अपनी फसल ने दोनों ने नुकसान करे। कई बार जठे मोटी नहरा बगे नदियां होवे बठे की जमीनी पानी ऊपर आ जाए, जको आपके सागे धरती के अंदर छू लवण और दूसरा तत्व ने ऊपर लिया आवे, इन छू सेम की भी समस्या पैदा हुए। जमीनी पानी जदे ऊपर आना लाग जे नी तो पानी को निकास रुक जे, एर बी छू की है जकी फसल होगी बिंगी जड़ा कने की लवण बेड़ा होने लाग जाएगा, माटी में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसमें फसल खराब होने लग जाए और बाद जमीन लवणीय हो जाए, ज्यादा टाइम ते जो समस्या बनी रहे तो की है बाद जमीन उस्तर हो जाए यानी बंजर हो जाए। किसान भाइयों अब बात करा लवणीय जल को माटी और फसल पर के बुरो असर हुए। किसान भाइयों जक्के खेता में लगातार लूण आलो पानी लग गए, बठे की माटी में लवण की सांद्रता की है बढ़ जी, जिंगे कारण जमीन में बीजान करण पर बीजा को अंकुरण कोनी हुए या माड़ो मोटो ही उगा हुए, फसल की बढ़वार और उपज भी अच्छी कोनी हुए, पौधा ने सारा जका पोषक तत्व तो चाहिए बे कोन मिले, क्योंकि की है कि मांगी जड़ा कमजोर रही जी। किसान भाइयों जक्के पानी में सोडियम कार्बोनेट ज्यादा हुए, बठे की माटी का ये कण है नी बे किए टूटन लाग जाए और जमीन में गहराई ती बैठ जाए, चीकनी माटी का बारीक कण पानी के सागे गुड़ गए नीचे पेंदे में जमा होता जावे और बठे की कठोर परत बना ले, जी शू की है पानी जको की नीचे कौन जा सके और जमीन की शोषण की जकी क्षमता है वह भी खत्म हो जाए और बठे की जमीन धीरे धीरे किए हुए सेम ग्रस्त हो जाए। किसान भाइयों अब बात करा खारे पानी छू सिंचाई प्रबंध आपा किया करा, तो इन सारू आपा ने खारे पानी छू सिंचाई को जाबतो ही तरिया करना चाहिए, जिस अपनी फसल और जमीन पर कम से कम असर हुए कम से कम प्रभाव पड़े। किसान भाइयों अब बात किसान भाइयों बरसात के पानी को पूरा उचित उपयोग आपन करना चाहिए, जब बरसात को सीजन हुए बीसू पहला की है खेत ने एक सार करके डोली काट देनी चाहिए, चारों मेर मोटी मोटी डोलियां बांध देनी चाहिए और मेह गए पानी ने खेत छू बाहर न जान देना चाहिए। बरसात को पानी खेत की माटी छू लवण भूमि गए अंदर ले जाए और ऊपर की माटी में लवण की मात्रा की है कम हो जाए। सिंचाई के तरीके में सुधार करना चाहिए, खारे पानी ने हल्की मात्रा में लगाना चाहिए, तरा भर भर के न लगाना चाहिए। लवणीय पानी छू सिंचाई हल्की मात्रा में कई बार करना चाहिए, कई हल्की सिंचाइयों के बाद एक भारी सिंचाई आपने देनी चाहिए, जिसो की ऊपर आएडा जका लवण है वे अंदर बैठ जाए। खारे पानी को फुहारा खेती छू इस्तेमाल खारे पानी को फुहारा खेती में इस्तेमाल न करना चाहिए, इस की है जका फसलों का पत्ता है वी पर जब बुखारो पानी पड़ेगा तो वहां पर बुरो असर पड़ेगा। फुहारा हमेशा रात में चलाना चाहिए, जे आपने कन्ने थोड़ी मात्रा में अच्छो पानी है तो पहला की है अच्छा पानी छू भी फसल का पत्ता ने धोना चाहिए और बाद में खारो चलानी चाहिए, और जब अपनो पानी लाग जाए तो 5-7 मिनट तक के बाद में मीठो पानी और चलाना चाहिए ताकि अपना जका पत्ता है वह अच्छी तरह धुप जाए, जो खारे पानी को असर है वो कम हो जाए। किसान भाइयों जठे ताई हो सके मिलवा पानी को हमेशा प्रयोग करना चाहिए, यानी मीठो और खारो पानी मिला के लगाना चाहिए, या फिर आप यहाँ कर सका एक बार आप मीठो लगा लिया और एक बार आप खारो पानी लगा लिया तो यहाँ आपने पानी को जाबतो करना चाहिए। कम पानी छू पाकन वाली और खारे पानी ने सहन करने वाली जकी फसल है मांगो बिजात करना चाहिए। किसान भाइयों जठे तई हो सके बिना रूणी के बिजात करनी चाहिए और ऊपर छू पानी देना चाहिए। खेत में गोबर की खाद है कंपोस्ट

0: खाद है और जो कि देसी खादा वह अंगो ज़्यादा अपने इस्तेमाल करना चाहिए। फसलों में टेमो टेम निराई गुड़ाई भी करनी चाहिए और जो हो सके तो कि अपने मल्चिंग हो यानी पलवार को काम भी करना चाहिए, जिसों कि अपनी ज़मीन में वाष्पीकरण की क्रिया कम हुए और पानी कम उड़े और लवण बिड़ाने उसके। और टेमो टेम पानी को अपने नमूनों ले गए, पानी की जांच भी करवाता रहना चाहिए। इन सारों पानी ने एक दो घंटा चला गए, फिर एक प्लास्टिक की बोतल ले गए जिसमें आधो लीटर नमूनों ले गए, अभी पर आपको नाम पतो नमूनों लेने की तारीख ये सब बातें एक पर्ची पर लिख के चिपका के प्रयोगशाला में भेज देनी चाहिए। और बाद जो की रिपोर्ट आवे बिंग अनुसार आपने पानी देना चाहिए। इन तरिया किसान भाई जी आपके खेत में लवणीय पानी को प्रबंध करेगा तो बेकी है भी शू पैदा होने वाली समस्या शू बचा रहेगा। अब अपने कार्यक्रम को समय पूरा होने लाग रही है तो थारे सुनील भाई ने दे दियो आज्ञा। राम राम सा राम राम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय था लवणीय सिंचाई जल का उपयोग। श्रोताओं आइए सुनते हैं ये लोक भजन भगत धर्मपाल भारती की आवाज में।

आप सुन रहे थे लोक भजन भगत धर्मपाल भारती की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 310।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानसगान, भाग संख्या 310, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में लेकर आपका अपना कार्यक्रम सुप्रभात। जिंदगी की तरह छोटी छोटी बातों पर खफा नहीं होती, जिंदगी की तरह छोटी

छोटी बातों पर खफा नहीं होती, मोहब्बत के बदले मोहब्बत देती है, किताबें बेवफा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, किताबें हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। किताबें हमारी अच्छी, सच्ची और साथ देने वाली दोस्त हैं। किताबें हमें आगे तो बढ़ाती है, हमें अच्छी जानकारी भी देती हैं। दोस्तों, किसी ने किताब लिखी, उस किताब में अपने 50 साल का अनुभव लिखा। आपने वो किताब पढ़ी तो आपका अनुभव आपकी उम्र से 50 साल अधिक हो गया। यही है किताबों का जादू।

आपने वो किताब पढ़ी तो आपका अनुभव आपकी उम्र से 50 साल अधिक हो गया। यही है किताबों का जादू।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक वार्ता मानवीय संवेदनाओं पर। वार्ताकार हैं पुष्पा देवी।
2: क्षमा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उससे अनेक प्रकार की भूलें और त्रुटियां हो जाती हैं। कभी वह स्वयं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और कभी दूसरों से पीड़ा प्राप्त करता है। ऐसे समय में जो भावना मनुष्य के हृदय को शांति, प्रेम और उदारता से भर देती है, वह है क्षमा। क्षमा केवल किसी की गलती को माफ कर देना नहीं है, बल्कि यह एक महान मानवीय गुण है जो व्यक्ति को क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावना से मुक्त करता है। भारतीय संस्कृति में क्षमा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कहा जाता है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक युग में क्षमा का महत्व और भी बढ़ गया है। यदि मनुष्य अपने भीतर क्षमा का गुण विकसित कर ले तो वह न केवल स्वयं सुखी रह सकता है, बल्कि समाज में भी प्रेम और सद्भाव का वातावरण स्थापित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाता है, तब हमारे मन क्रोध, घृणा से और बदले की भावना उत्पन्न होती है। परंतु जो व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपराधी को क्षमा कर देता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर सकारात्मक जीवन जीने लगते हैं। क्षमा आत्मिक विकास का भी साधन है। यह व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और प्रेम का विकास करती है। मनुष्य से भूले होना स्वाभाविक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की गलतियों का बदला लेने लगे तो समाज में अशांति और हिंसा फैल जाएगी। क्षमा समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता है। क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के बावजूद अहिंसा और क्षमा का मार्ग अपनाया। कुछ लोग यह मानते हैं कि क्षमा करना कमजोरी का प्रतीक है, परंतु यह धारणा गलत है। वास्तव में क्षमा करना अत्यंत कठिन कार्य है। बदला लेना आसान है, किंतु क्रोध पर नियंत्रण रखकर किसी को क्षमा करना साहस और आत्मबल का परिचायक है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। अपराध और अन्याय का विरोध करना आवश्यक है, लेकिन मन में घृणा और प्रतिशोध की भावना रखना उचित नहीं है। न्याय के साथ करुणा और उदारता का समन्वय ही सच्ची क्षमा है। विद्यार्थी जीवन में क्षमा का विशेष महत्व है। विद्यालय में मित्रों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। यदि विद्यार्थी एक दूसरे को क्षमा करना सीख ले तो उनके संबंध मधुर बने रहते हैं। शिक्षक भी विद्यार्थियों की गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें अवसर देते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपने साथियों की भूलों को समझने और क्षमा करने का गुण विकसित करना चाहिए। अंततः कहा जा सकता है कि क्षमा केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वही सच्चे अर्थों में महान और सफल जीवन जी सकता है। क्षमा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने वाली एक श्रेष्ठ भावना है और यही उसके जीवन की वास्तविक शोभा है। करुणा, मानव जीवन में अनेक भावनाओं और संवेदनाओं का संगम है। इसमें करुणा एक ऐसी महान मानवीय भावना है जो व्यक्ति को केवल अपने हित तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझने और उससे दूर करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा का अर्थ है दूसरों का कष्ट देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाली दया, सहानुभूति और सहायता की भावना। यह केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो मनुष्य को मानवता की

0: ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम था जख्म। संगीत था MM करीम का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के। दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाती है। करुणा के बिना मनुष्य का जीवन नीरस, स्वार्थपूर्ण और कठोर हो जाता है। इसलिए करुणा को मानवता का मूल आधार माना गया है। करुणा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दया, संवेदना और परोपकार की भावना। जब किसी व्यक्ति को दूसरे के दुख, पीड़ा या संकट को देखकर मन में सहायता करने की इच्छा उत्पन्न होती है तब वह करुणा कहलाती है। करुणा केवल दुखी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसके कष्ट को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास करने की प्रेरणा भी देती है। करुणा और दया में सूक्ष्म अंतर है। दया में कभी कभी श्रेष्ठता का भाव हो सकता है जबकि करुणा में समानता और आत्मीयता का भाव निहित होता है। करुणा में व्यक्ति दूसरों को अपने समान समझता है और उनके दुख को अपना दुख मानता है। इसलिए करुणा को मानव हृदय की सर्वोच्च संवेदना कहा गया है। करुणा मानवता का मूल तत्व है। यदि मनुष्य के हृदय में करुणा नहीं है तो वह केवल जैविक दृष्टि से मनुष्य है, वास्तविक अर्थों में नहीं। करुणा व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है। यही संवेदनशीलता समाज में सहयोग, भाईचारा और एकता को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब, बीमार, वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सहायता करता है तब वह करुणा का परिचय देता है। करुणा से प्रेरित होकर लोग रक्तदान करते हैं, अनाथ बच्चों की सहायता करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में भाग लेते हैं और समाज में कठोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ये सभी कार्य मानवता की सच्ची अभिव्यक्ति है। करुणा का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं पड़ता बल्कि यह स्वयं व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होती है। करुणा में व्यक्ति अधिक शांत, संतुलित और संतुष्ट रहता है। दूसरों की सहायता करने से उसे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। करुणा मानव जीवन की सबसे मूल्यवान और पवित्र भावनाओं में से एक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करुणा को स्थान दे तो समाज अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील, सुखी बन सकता है। इसलिए हमें अपने विचारों, व्यवहार और जीवन दृष्टि में करुणा को अपनाना चाहिए। यही सच्ची मानवता है और यही एक बेहतर विश्व के निर्माण का आधार है। मोक्ष। भारतीय दर्शन में मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को केवल जन्म, भोग और मृत्यु तक सीमित नहीं माना बल्कि उसे आत्मा की अनंत यात्रा का एक चरण बताया है। इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है बंधन से मुक्ति। यह मुक्ति केवल शारीरिक या सामाजिक बंधनों से नहीं बल्कि जन्म मरण के चक्र, अज्ञान, मोह, अहंकार, लोभ, क्रोध तथा समस्त सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। इसमें मोक्ष को अंतिम और सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है क्योंकि इसके प्राप्त होने पर मनुष्य परम शांति, आनंद और आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आज के भौतिक युग में मनुष्य सुख सुविधाओं के पीछे निरंतर दौड़ रहा है फिर भी उसके जीवन में शांति का अभाव दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता का मापदंड मान लिया है और आत्मिक विकास की उपेक्षा कर दी है। ऐसे समय में मोक्ष की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की अनुभूति में निहित है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां मृत्यु के बाद पहुंचा जाए बल्कि यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य सुख, दुख, लाभ, हानि, मान अपमान और राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। वह संभाव में स्थित होकर जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत, निर्मल और करुणामय होता है। भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराओं ने मोक्ष को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है परंतु सभी का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति ही है। भारतीय ग्रंथों में मोक्ष प्राप्त करने के अनेक मार्ग बताए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार इसमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकता है। ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उपनिषदों का अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन, चिंतन और आत्मनिरीक्षण इस

0: अर्घ के प्रमुख साधन है। जब मनुष्य समझ लेता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब उसका मोह समाप्त होने लगता है। भक्ति मार्ग में सबसे सरल और लोकप्रिय माना जाता है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखा जाता है। सच्चा भक्त अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है। भक्ति मन को निर्मल बनाती है और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। राजयोग के माध्यम से मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित ध्यान, प्राणायाम, आसन और समाधि के अभ्यास से मनुष्य आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और समस्त प्राणियों में एक ही परम चेतना का दर्शन करता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। यही मोक्ष का सच्चा संदेश है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श भी है। प्रेम मानव जीवन की सबसे सुंदर, पवित्र और शक्तिशाली भावना प्रेम है। वह अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से, परिवार को परिवार से, समाज को समाज से और समस्त सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ती है। प्रेम केवल आकर्षण या भावनात्मक लगाव का नाम नहीं है बल्कि त्याग, समर्पण, करुणा, सहानुभूति और आत्मीयता का व्यापक स्वरूप है। जिस हृदय में प्रेम का वास होता है, वहाँ द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा के लिए स्थान नहीं रहता। प्रेम जीवन को अर्थ प्रदान करता है तथा मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य कवियों, दार्शनिकों, संतों और विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रेम की व्याख्या शब्दों में करना कठिन है क्योंकि यह अनुभव की वस्तु है। जिस प्रकार फूल की सुगंध को केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम को भी केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है। प्रेम का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। सामान्यतः लोग प्रेम को केवल स्त्री पुरुष के संबंधों तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में प्रेम अनेक रूपों में हमारे जीवन में उपस्थित रहता है। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति स्नेह, मित्रों के बीच विश्वास, भाई बहन का अपनापन, गुरु का शिष्य के प्रति वात्सल्य, देश के प्रति समर्पण तथा ईश्वर के प्रति भक्ति, ये सभी प्रेम के ही विविध रूप हैं। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। उसमें पाने की अपेक्षा देने की भावना अधिक होती है। जहाँ केवल अपने सुख और लाभ की चिंता हो, वहाँ प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। प्रेम का वास्तविक अर्थ है दूसरों के सुख में अपना सुख अनुभव करना। इसी कारण प्रेम को त्याग और बलिदान का पर्याय माना गया है। मानव जीवन में प्रेम का अत्यधिक महत्व है। प्रेम के बिना जीवन नीरस, कठोर और अर्थहीन प्रतीत होता है। प्रेम मनुष्य के व्यक्तित्व को कोमल बनाता है तथा उसके भीतर मानवीय गुणों का विकास करता है। प्रेम के कारण ही व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझ पाता है और सहायता के लिए आगे बढ़ता है। यदि परिवार में प्रेम ना हो तो परिवार टूट जाता है। यदि समाज में प्रेम ना हो तो संघर्ष और हिंसा बढ़ जाती है। यदि राष्ट्रों के बीच प्रेम और सद्भाव ना हो तो युद्ध और विनाश का वातावरण बन जाता है। इसलिए प्रेम केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति का आधार भी है। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण गुण त्याग है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम अधूरा है। जहाँ सच्चा प्रेम कभी अधिकार जताने का प्रयास नहीं करता है बल्कि प्रिय व्यक्ति के सुख और उन्नति के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो रहता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग करते हैं। वे अपने सुखों का बलिदान करके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रेम मानव जीवन की सबसे मूल्यवान निधि है। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रेम मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है, समाज में सद्भाव स्थापित करता है और विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रेम के बिना जीवन सोना और अधूरा है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे वार्ता मानवीय संवेदनाओं पर। वार्ताकार थी पुष्पा देवी। आइए अब बात करते हैं सद्भाव की। सद्भाव का अर्थ है अच्छे और प्रेमपूर्ण भावों के साथ मिलजुल कर रहना। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों के धर्म, विचार और जीवन शैली का सम्मान करें।

और मन में द्वेष या घृणा न रखें। सद्भाव के वातावरण में घर, विद्यालय और समाज में सहयोग, समझदारी और भाईचारा बढ़ता है, जिससे झगड़े और तनाव कम होते हैं और शांति स्थापित होती है। जब हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर एक दूसरे की मदद करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर साथ खड़े होते हैं, तब सच्चे अर्थों में सद्भाव का निर्माण होता है। यही सद्भाव किसी भी परिवार, मोहल्ले और देश को मजबूत बनाने की नींव है।

इस गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें इजाज़त। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।

0: और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ

0: शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने

0: वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026.

0: से होंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताल्लिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नज़रअंदाज करने की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026

0: सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमा मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नज़र कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नज़र हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नज़र पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिकार से।
0: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादित इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमेरिका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताज़ा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवीं रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिज़ाइल और ड्रोन के जखीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदाराने इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाज़े की हालिया शिद्दत के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफ़र मुलतवी कर दें जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खौस करें और इसके लिए वो जो भी परवाज़ें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपनी ज़ाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएँ। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के

0: लिए सिफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +989128109105, +989128109109, +989128109102 और +989932179359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें छठे मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टोरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी क्लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसां सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार तरंग। समाचार तरंग हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
4: और मैं रितिका गुप्ता
3: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
4: राजस्थान विधानसभा स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने शिरकत की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।
4: जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन।
3: गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच के लिए प्रदेश भर में सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया।
4: राज्य का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू।
3: जुलाई माह अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जा रहा है।
4: राज्य के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब बनाई जाएगी।
3: विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया।
4: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम रखा गया। विधानसभा परिसर में हुए कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शामिल हुए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता

0: विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
1: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का पंजाब के जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से राष्ट्रीय लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
2: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
4: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फ्रेंस है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे, तो वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो हेलिंग और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है, तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की जो काम है, उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
2: जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
6: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के लिए।
0: प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 दिन तक उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जाँच कर रही है। खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
7: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया, जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ

0: गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं।
1: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
2: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
3: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सिरोही जिले के मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
4: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। अब किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजनाएं आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
1: प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। ये केंद्र अदालती मामलों में संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा और भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जयकिशन शर्मा की रिपोर्ट।
5: अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र, जिसे वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस केंद्र में पॉक्सो सहित अन्य संवेदनशील मामलों के पीड़ितों और गवाहों के बयान सुरक्षित, सम्मानजनक और भय मुक्त वातावरण में दर्ज किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गवाहों और पीड़ितों पर मानसिक दबाव कम करना तथा उन्हें बिना किसी भय या प्रभाव के अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
3: देश भर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
6: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5,00,000 लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रेनडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है।
7: हमारे हिंदुस्तान में SMS मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जान पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिला के मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
3: प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब बनाई जाएगी। पीएम श्री विद्यालयों की संस्था प्रधानों की राज्य स्तरीय वेबिनार में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा

0: कि इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा मिल सकेगी। वेबिनार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के नवाचारों और सर्वोत्तम नीतियों को अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
1: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे पे। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
2: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली, अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री के विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान है, पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इनवाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ पीएम सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
0: झालावाड़ में राज सखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इसका शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
4: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टोर को हमारी जो राजीव गांधी जो महिलाएं हैं वही संचालित करेंगी। सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारी राजीव गांधी की महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेगी। यहां पर जो राजीव गांधी की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
2: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से सोमवार को मुलाकात होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीना।
5: आप सुन रहे थे समाचार तरंग। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
6: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी की संभावना, 4 संभागों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार और इन्हें पारित किए जाने की संभावना है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया।

0: श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। मॉनसून सत्र से पहले कल ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मुख्य मुद्दों और रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: गौरतलब है कि मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा। 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्ष चुनाव की तैयारियों, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे। राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने की समय सीमा भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। इससे पहले उच्च न्यायालय चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जता चुका है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने कोटपुतली बहरोड जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोटपुतली पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक में आमजन से संवाद कर यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, जाम और बढ़ते अपराध से जुड़े सुझाव और समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने दिन में पुलिस गश्त बढ़ाने, थाने के डिजिटलीकरण और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। पुलिस महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राहुल प्रकाश ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
2: जनता की तरफ से जो सुझाव आए या जो उनकी समस्याएं थी वो सारी ऐसी थी जिसपे काम करना चाहिए हमें और उसको हल करना चाहिए। उसके लिए बहुत जल्दी काम करके हफ्ते भर के अंदर मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की है कि इनको वापस सूचित भी करें। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से निवेदन किया था कि साइबर क्राइम जो कि बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच में जागरूकता हो। वो लोग ज़रूर अपने घर में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पे बात करें कि किस प्रकार से विभिन्न तरीकों से साइबर क्राइम हो रहे हैं जिससे कि लोग उससे बच सकें। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी मैंने सभी से निवेदन किया है कि बहुत ज़रूरी है कि आपस में जागरूकता हो।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाटू श्याम जी, गिरिराज जी और पुष्कर के ब्रह्म मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विभिन्न काम किए जा रहे हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। कल जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के साथ शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
3: और भी बहुत

0: जगह, इन सब जगहों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी और पूरे साल भर सिर्फ वो जो 6 महीने हैं जब टूरिस्ट भी उस समय आते हैं और शादियाँ भी उस समय होती हैं। उसके अलावा ये भी थोड़ा ध्यान दें कि और भी सावे बहुत होते हैं गर्मियों में, मानसून में, उनमें भी अगर शादियाँ होंगी तो ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजस्थान बन जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार मिलेगा लोगों को, उनको बार बार बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, ये बात भी।
1: कोटा विश्वविद्यालय ने कृषि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे की एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 5 वर्ष का समझौता किया है। इसके तहत कृषि पर्यटन से जुड़े नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अध्ययन भ्रमण और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभयारण्य में वन्य जीवों के लिए सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति व्यवस्था शुरू की गई है। अभयारण्य के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सौर ऊर्जा की मदद से जंगल में स्थित वाटर होल तक नियमित पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे बाघों और अन्य वन्य जीवों को विशेषकर गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है।
2: सोलर एनर्जी से 2-3 चीज हो रही हैं। एक तो बोरवेल्स के माध्यम से वाटर होल्स भरे जा रहे हैं, दूसरा जो हमारे इंटीरियर जो चौकी है वहां पर सोलर एनर्जी के माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि हमारा स्टाफ वहां रह पा रहा है। बोरवेल से क्या हो रहा है कि जो वाटर होल्स हैं, जो ये पर्टिकुलरली जो गर्मी का 2-3 महीने है ये क्रूशियल है, जहां पानी कहीं भी नहीं होता है तो वो वाटर होल्स जो भरे जा रहे हैं, जिससे क्या है कि जो माइग्रेशन जो हो रहा है एनिमल्स का, टाइगर्स का, दूर तक माइग्रेशन होता है वो थोड़ा सीमित हो जा रहा है और उससे क्या है कि हमें टाइगर्स देखने को भी ज्यादा मिल रहे हैं, उनका एक जगह उनका लोकेशन भी केंद्रित हो रही है, इसके साथ ही साथ उनको पीने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी भी मिल रहा है।
1: प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने और 22 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। माउंट आबू में 2.5 मिलीमीटर और चित्तौड़गढ़ में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून गतिविधियों में तेजी की संभावना, कई संभागों में बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं सोहन प्रकाश।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे सोहन प्रकाश को। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और फिल्म का नाम था शक्ति।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म लव स्टोरी से। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के।

ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत था आनंद मिलिंद का, गीत के बोल थे जावेद अख्तर के, और फिल्म का नाम था मृत्युदंड।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आज के फनकार।

मोहब्बत, मुस्कान और अपनापन लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त गुलशन। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।

दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता को जिसकी फिल्मों ने सफलता के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि लोग उन्हें प्यार से जुबली कुमार कहने लगे। 20 जुलाई को जन्मे अभिनेता राजेंद्र कुमार केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसा दौर थे जब उनकी फिल्म का नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता था। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने रेडियो सेट की आवाज बढ़ा लीजिए। राजेंद्र कुमार की यादगार फिल्मों और उनके सदाबहार गीतों के साथ आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर।

दोस्तों, सियालकोट पंजाब की मिट्टी में जन्मे राजेंद्र कुमार ने बंटवारे के बाद का कठिन वक्त भी देखा और फिर मुंबई की ओर रुख किया, जहां सपने तो बहुत थे मगर रास्ते आसान नहीं थे। शुरुआती दौर में कई फिल्मों में उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं की, कभी भीड़ में नजर आए तो कभी नाम के बिना रोल किया। मगर फनकार का असली इम्तिहान यही होता है, संघर्ष के दौर में सपने जिंदा रखना। धीरे धीरे उन्हें ऐसे अवसर मिले जिन्होंने उनके हुनर को पहचान दिलाई और फिर 60 के दशक में वो दौर आया जब वे हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गई।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और फिल्म का नाम था गीत। दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको अब हम सुनवाएंगे राजेंद्र कुमार की फिल्मों के कुछ सदाबहार गीत। लेकिन अभी एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
4: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: दोस्तों, राजेंद्र कुमार की कुछ फिल्में जैसे धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, आरजू, सूरज और संगम जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उस दौर में निर्माता कहते थे, अगर फिल्म में राजेंद्र कुमार है तो सफलता तय है। यही वजह थी कि उनके नाम के साथ जुबली कुमार हमेशा के लिए जुड़ गया। अब सुनते हैं उनकी एक और अमर फिल्म संगम का ये सदाबहार गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के, और फिल्म का नाम था संगम। दोस्तों अभी रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर
4: फास्ट एक्सप्रेस
3: के यात्री
4: आई एम हियर। इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दोस्तों राजेंद्र कुमार ने अपने अभिनय से प्रेम, त्याग और संवेदनशीलता को जिस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, वो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी। वे बिना किसी बनावटी अंदाज के सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाते थे। उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की शालीनता और भावपूर्ण अभिनय ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के। फिल्म का नाम था आप आए बाहर आई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कितना सीधा साधा मगर असरदार अभिनय था राजेंद्र कुमार का। उनके चेहरे पर एक अलहदा मासूमियत थी, जो रोमांस हो या इमोशन, हर सीन को दिल तक पहुंचा देती थी। शायद यही वजह थी कि दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, 1960 का दशक हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों का स्वर्णिम काल माना जाता है। उस समय दर्शक सिनेमाघरों में सिर्फ कहानी देखने नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार की सादगी, मुस्कान और भावपूर्ण अभिनय का जादू महसूस करने भी जाते थे। उनकी एक खास बात यह थी कि वे अपने किरदार को कभी अभिनय की तरह नहीं निभाते थे बल्कि उसे जीते थे। यही कारण था कि उनके दुख में दर्शक रोते थे और उनकी खुशी में मुस्कुराते थे।

कि वे अपने किरदार को कभी अभिनय की तरह नहीं निभाते थे बल्कि उसे जीते थे। यही कारण था कि उनके दुख में दर्शक रोते थे और उनकी खुशी में मुस्कुराते थे।

झुक गया आसमान। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के। दोस्तों, राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा था जब उनकी लगातार कई फिल्में सिल्वर जुबली मना रही थी। कहा जाता है कि निर्माता उनकी तारीख पाने के लिए महीनों इंतज़ार करते थे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वे बेहद विनम्र और सरल स्वभाव के इंसान थे। अपने सह कलाकारों का सम्मान करना उनकी आदत थी। सेट पर समय की पाबंदी और अनुशासन के लिए भी वे जाने जाते थे।

गोरा और काला, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के। दोस्तों, राजेंद्र कुमार की फिल्मों में सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि संगीत भी असाधारण रहा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कई अमर गीत राजेंद्र कुमार के चेहरे पर फिल्माए गए जो आज भी महफिलों में गुनगुनाए जाते हैं। कितना खूबसूरत मेल था संगीतकारों की धुन, रफ़ी साहब की आवाज़ और राजेंद्र कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस। गीत जैसे जैसे आगे बढ़ता, उनके भाव, उनकी आंखें हर लफ्ज़ को अर्थ दे देती थी।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम था मेरे महबूब। दोस्तों, समय बदला, संगीत के रंग भी बदले, मगर सदाबहार गीत कभी बूढ़े नहीं हुए। यही तो फनकार की असली पहचान है। सालों बीत जाएं, पीढ़ियां बदल जाएं, मगर उसका काम नई नई यादों के साथ फिर जीवित उठे। राजेंद्र कुमार ने अपने अभिनय और चुनी हुई फिल्मों के जरिए वही अमरता हासिल की। अब सुनते हैं उन पर फिल्माया एक और नगमा।

दोस्तों, 12 जुलाई 1999 को इस महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में और गीत आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। इस गीत के साथ अपने दोस्त गुलशन को दें इजाजत और आप सुनते रहें आकाशवाणी सूरतगढ़। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार।

गीत बहार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नरेश वर्मा की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए चंद मोहब्बत भरे प्यारे प्यारे गाने लेकर। दोस्तों, मोहब्बत दुनिया की वो शय है जो कभी मिटती नहीं। यूं तो दुनिया है मौजे दरिया और कतरे की ज़िंदगी क्या, और पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फ़ानी। ये जो दुनिया है उसकी हर शय फ़ानी है, नश्वर है, मगर मोहब्बत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और हम इसी प्यार मोहब्बत के सदके हज़ारों लाखों करोड़ों दिलों में अपना घर बना सकते हैं। पहले गाने के साथ चंद अशार हैं आपके लिए कि जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा मैंने, जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा मैंने, हर जगह अपने आप को दीवाना लिखा मैंने। जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा मैंने, हर जगह अपने आप को दीवाना लिखा मैंने, बेखुदी ने मुझे फिर होश में आने न दिया, तेरी आँखों को जब मैं खाना लिखा मैंने, हर जगह अपने आप को दीवाना लिखा मैंने।

दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना। फिल्म थी आई मिलन की बेला, मशहूर अदाकार राजेंद्र कुमार की फ़िल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। और आप जानते हैं कि आज राजेंद्र कुमार की जयंती है और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, और आपने अपने संदेशों में राजेंद्र कुमार की फिल्मों के खूबसूरत गानों की फरमाइश लिखी है। हम आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में उन्हीं की फिल्मों के गाने। अभी आपने जो गाना सुना वो गाना हमने सुनवाया आप सभी अजीज़ साथियों को, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, आप हैं दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल, राजपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल, जयपाल और आपके बहुत से साथी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और हमारे नियमित साथी हैं।

सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का। आप हैं हनुमानगढ़ टाउन से मोहम्मद रज्जाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। बांडीवाला फाजिलका से लिखते हैं संदेश हमें ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। आपने संदेश भेजा है कॉल सिटी बरका काना से। अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। आप हैं चकपंद्रह PS से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन और रोबिन सिंह जोशन। और आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और साथ में डब्बू। मुंगीसापुर से आप लिखते हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। बनवाला हनुमंता फाजिलका से हमारे साथी हैं विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनका परिवार। ये संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला। और हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू। उम्मीद है आप सबको पहला गाना पसंद आया होगा। अगला गाना हम सुनवाना चाहते हैं आप सभी साथियों को पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, परल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। ये संदेश हमें मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना की तरफ से। संदीप सिंह सोनगरा, प्राची कोमल सोमल और कार्तिक सोनगरा, फवारा चौक सिरसला चुरू से आप लिखते हैं। खरगोन सनावद से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा। और अनूप शहर से गजानंद शर्मा, ताराचंद, कृष्ण कुमार, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारी लाल, मदन लाल, फूसाराम, महावीर लोहरा और आपके साथी। 67 सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज। गांधी नगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल और उर्वशी। विद्यालय नगर MP से लिखते हैं चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और आपके परिवार के सभी लोग। सूर्यवाला हनुमानगढ़ से डॉक्टर सतनाम सवना, जसविंदर जसी, सुमन और आपके बहुत से साथी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कोहला से महावीर सुथार, नरेंद्र सुथार, सुनील सुथार, अमरजीत सुथार, मदन लाल और आपके बहुत से साथी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप लिखते हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जेतेग विरक और मीका विरक। और आप हैं अमरपुरा जालूखाड़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू, राजेंद्र प्रजापति और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, आइए सुनते हैं। दोस्तों ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। ये फिल्म है सूरज, सुने ये बहुत ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में धरती फिल्म का ये गाना। अगले गाने के लिए हमें संदेश मिले हैं हमारे आप सभी अजीज साथियों के। अनारकली बाज़ार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव अरायण से बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता।

दिशा मोक्स, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया और आपके बहुत से साथी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राजेश, राकेश और ऋषिता, आप हैं सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख, ज्योति नगर नोखा से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से लिखते हैं संदेश, रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, लोगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्णजीत सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी, शिवम जाखड़ और आपके बहुत से साथी, आप हमारे नियमित साथी हैं। घंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमना तमना, साइना, विष्णु ढोकिया और बेबी इवा धारणिया, कलाना भादरा से लिखते हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश भावसार, सन्नी भावसार और आपके बहुत से साथी, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान और हरविंदर मान, राज सिंह प्रीत मान और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और आपके बहुत से साथी, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और आपके बहुत से साथी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह, आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा गाना राजेंद्र कुमार की फिल्म धरती से, आइए सुनते हैं। इस गाने में आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, सुने।

दोस्तों, आपने धरती फिल्म का ये दो गाना सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इन्हीं आवाज़ों में अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं ससुराल फिल्म से, आप सभी साथियों के लिए। गांव ढाणी लाल खान ओहर से जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान और आपके बहुत से साथी। अली का डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। आप हैं ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी। पींगा वाला चौक गोराया जालंधर से आप संदेश भेजते हैं। नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। ये संदेश हमें मिला है समता नगर काष्टी से, लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप, नलोई शिवानी मंडी हिसार से, सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत और मिथिल नाचानी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और आपके परिवार के लोग, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, राजकोट से जेमिनी जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। आप हैं

गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, हीरावाली फाजिलका से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारीक और भूपेंद्र पारीक, आसाम से हितेंद्र दास, बठेनापाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति, निधि निखिल वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप। और हमें कुछ खत भी मिले हैं, कुछ खत भी हम शामिल करते हैं। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला गैरी, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। मक्खू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज। बोडसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति और अंशु बबली साहू और प्रियांश साहू। ये खत हमें मिला है दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल की तरफ से। और आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है आपके रेडियो तक ये बहुत ही प्यारा सा गाना, आपके लिए सुनिए।

बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, ससुराल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। अगला गाना हम सुनवाना चाहते हैं आप सभी साथियों को। आप हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साईं गायकवाड़। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी सौरभ, सायना और निवान शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। भुच्चो कैंचियां बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू एकम, दमन अभिजोत और आपके बहुत से साथी। आप हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये। और ये संदेश हमें मिला है हमारे साथी 58NP रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, ललित नरेंद्र मीनाक्षी और समस्त मलखट परिवार।

आप हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, और ये संदेश हमें मिला है हमारे साथी 58 NP रायसिंह नगर से, सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, ललित नरेंद्र मीनाक्षी और समस्त मलखट परिवार। और आप हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, और रायसिंह नगर से धनराज भांभू, सोहनलाल जांगीर, चेतन राम सारस्वा, प्रदीप सारस्वा, राजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय कासनिया, आशीष भांभू, और ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से आप लिखते हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। सूरतगढ़ से मनशा राम, श्रवण कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार, भगवाना राम, मनोज कुमार, मुकेश कुमार और करण कृष्णा। नाभा पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और आपके बहुत से साथी। कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और इनका पूरा परिवार। ये संदेश हमें मिला है बुलढाणा वड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फाल्गुनी जोशी और ध्रुवी जोशी। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और अदीब। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल बाबू, प्रियांश कुमारी देवांगन और भाव्या देवांगन। जलालपुरा सहारनपुर से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश और मुनेश देवी प्रजापति। और आप हमारे साथी हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। और आप हैं केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरा लाल गजरा और अशोक मित्तल के साथ ताराचंद दाइमा। लखू वाली हेड से मास्टर भंवर लाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और आपके बहुत से साथी। और आप हैं हमारे नियमित साथी शादुल शहर से आप लिखते हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आपके लिए आ रहा है ये गाना, सुनिए। गहरा दाग फिल्म है, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

दोस्तों, आप सुन रहे थे गहरा दाग फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना आपके लिए। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी हमारे साथी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत संदेश हमें भेजे हैं। अगला गाना आप सबके लिए आ रहा है, आप हैं हमीरपुर बुलंदखंड बुंदेलखंड यूपी से, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दीवांशी विश्वकर्मा। आप हमारे साथी गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, और आप हैं सुनीता सूद, चांदनी, विश्वजीत, आशीष सूद। 14 PS से आप लिखते हैं कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण, हरदीप सिंह, मनराज विरक और आपके बहुत से साथी। संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। राज प्लेस मऊनाथ वंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक के साथ आर्यन वर्मा, रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी। आकली दीवान MP से आप लिखते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर हरिद्वार से, वड़िंग खेड़ा से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और आपके बहुत से साथी। मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और राजू प्रजापत, संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। आप हैं चाईबासा सिंहभूम झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम आपके साथ हैं, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और आप हैं बहलोल नगर से हरीश हेरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। आप सबको सुनवाते हैं राजेंद्र कुमार की फिल्म हमराही का ये प्यारा सा गाना, ये शाम का गाना आप सुनिए।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत बहार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हम आपको सुनवा रहे हैं गीत बहार कार्यक्रम में मशहूर अदाकार राजेंद्र कुमार की जयंती पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने जो आपने पसंद किए हैं अपने संदेशों में। आप हैं आकली दीवान से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी, मानसा से जगदीश राय गर्ग और आपके बहुत से साथी, सीतामऊ रोड नाटाराम मंदसौर से आप लिखते हैं दशरथ सेन, रानू सेन, सुनीता, कौशल्या बाई, गोपाल सेन, हिमांशी, गुरमीत और सांची सेन। आप हैं सिरसा खारियां ढाणी से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आर

नव्या बिजारणिया और आपके बहू से साथी, और यह संदेश मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की तरफ से। आप हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत और आपके बहुत से साथी। रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब और बिट्टू झांब, झज्जर हरियाणा से आप लिखते हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। और हमारे कई साथियों के खत भी मिले हैं, शामिल करते हैं हम। मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और निशु, चाहल कला पंजाब से अमरजीत सिंह, अम्बा चहल राजा और आपके बहुत से साथी। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और आपके बहुत से साथी। ये खत मिला है अबोहर नई आबादी पंजाब से डिंपल सोनी, संतोष राखी कोमल और रिद्धि सोनी की तरफ से। और आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और आपका परिवार। और आप हैं नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सिंह और कालू मिस्त्री। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना प्यार का सागर फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुनिए।

0: दोस्तों, प्यार का सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाना चाहते हैं साथी फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ों में। खत मिले हैं आप सभी दोस्तों के, मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा विवान, अनमोल, वीर सिंह और रमेश मिगलानी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, रमा पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, आरएस पुरी और आपके बहुत से साथी। आप हैं कृष्णा विहार कॉलोनी नोहर से प्रेम देवी सीवर और आपके परिवार के तमाम लोग, गिद्दड़बाहा पंजाब से मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल और बेबी हनासा, पदमपुर से पवन तनेजा और आपके बहुत से साथी। और आप हमारे साथी हैं मंडी गोलवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान और आपके बहुत से साथी, संगरिया से भूपेंद्र सिंह सुथार और आपके परिवार के लोग, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और आप हैं नोहर हनुमानगढ़ से डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल और श्रीमती मधुलता पुरोहित। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं ये खूबसूरत गाना।
1: मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है।
2: तुम भी गाओ।

मैं हूँ अकेला कब से मगर, मैं हूँ अकेला कब से मगर, तू आज भी मेरे साथ हो जैसे, याद में तेरी यूँ भी हुआ है, हाथों में तेरा हाथ हो जैसे। नरेश वर्मा को इजाज़त दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बज चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए, चंद खूबसूरत पुराने गाने आपके लिए। 12:23 पर सुगम संगीत में चंद गजलें। 12:50 पर जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विषय पर खेत खलिहान में जानकारी आप सुनेंगे। 1 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले होंगे। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत, जानकारी के विषय पद्मश्री से सम्मानित स्वीता पूनिया, घर का रसोई से छोटा व्यवसाय, अंगदान का संकल्प और सेव के फायदे। कार्यक्रम पेश करेंगी अंकिता अरोड़ा। 2 बजे मिड डे न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से और साथ ही 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 3 बजे आप सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी, चंद खूबसूरत गाने और समसामयिक जानकारी के साथ कार्यक्रम पेश करेंगे रोहिताश शर्मा। 6 बजे कार्यक्रम विवरण आप सुनते हैं। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराइकी। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हम रिले करेंगे।

नाशक छिड़काव करते समय सावधानियां, मुर्गी पालन, लाभकारी व्यवसाय और बालिका शिक्षा आवश्यक कार्यक्रम पेश करेंगे भारत भूषण। 7:45 पर फिल्म संगीत, 8 बजे आप सुनिएगा दिल्ली से संसद समीक्षा, 8:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा, 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News 8:09 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत, 9:30 पर पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा, 10 बजे खेल जगत आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से, और आप सुनिएगा संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग समाप्ति तक सुनेंगे आप 10 बजे से लेकर 10:59 तक समाप्ति तक, और उसके बाद में 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

सभी सैनिक भाइयों और हमारे तमाम अजीज श्रोताओं को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया की, गुजरे ज़माने की मशहूर गायिका गीता दत्त, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में गीता रॉय के नाम से गाने गाए और फिर बाद में गीता दत्त के नाम से अपने गाने गाए, आपकी आज पुण्यतिथि है, आपको याद करते हैं, आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनवाते हैं गीता दत्त के गाए चंद बहुत ही प्यारे गाने। पहला गाना वो गाना जो बरसों से आज भी मशहूर है, सुन के देखिए आप।

0: श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम के आगाज में आप सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये खूबसूरत गाना। गीता दत्त की आवाज़ में मजरू ने गाना लिखा और संगीत ओपी नैयर का था। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश। ये फिल्म है इंसान और इंसान, आवाज़ गीता दत्त की और संगीत है ताजदार ताज का। आइए सुनते हैं।
1: नट उलझी है सुलझा दे मोरे बाल
0: ये गाना लिखा है ताजदार ताज ने और संगीत है रतनदीप हेमराज का। आइए सुने।

इंसान और इंसान फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में, और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश। सुनिए।

आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। छू मंत्र फिल्म से ये गाना जो है हमने आपको सुनवाया। इस गाने को लिखा जानिसार अख्तर ने और संगीत था ओपी नैयर का। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, आइए सुने।

अभी आपने ये गाना सुना, मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में गाना, मजरू सुल्तानपुर ने लिखा, संगीत ओपी नैयर का था। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मिस कोका कोला फिल्म का ये गाना। गीता दत्त की आवाज़ में मजरू का गाना था, संगीत ओपी नैयर का था। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुजरे दौर की मशहूर गायिका गीता दत्त की बरसी पर उनको याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के गाने। आखिरी गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता घोष रॉय चौधरी, इनका पूरा नाम। कुछ गाने शुरुआती फिल्मों में इन्होंने गीता रॉय के नाम से गाए और फिर गीता दत्त के नाम से गाए। आपका जन्म हुआ 23 नवंबर 1930 को बंगाल में, और आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1972 को आप छोटी सी उम्र में, सिर्फ 41 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन आपके गाने कितने खूबसूरत हैं ये हम सभी जानते हैं। आज इनकी बरसी का दिन इनको याद करते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं आखिरी गाना कार्यक्रम का। फिल्म है आर पार, आवाज़ गीता दत्त की, गाना मजरू ने लिखा, संगीत ओपी नैयर का है। आइए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 और 30 सेकेंड हुए हैं। अब सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपका स्वागत है। हमारे आज के फनकार हैं गायक जगजीत सिंह। सुनते हैं चंद बेहतरीन गजलें आपके लिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद बेहतरीन गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के फनकार थे गायक जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हुए हैं। अब सुने खेत खलिहान में पशुओं के आहार में नमक का महत्व विषय पर जानकारी। आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों, राम राम। आपने क्षेत्र में भाई लोग है जगह भांत भांत की फसलां लेवे। इंगे सागे सागे भाई लोग कहने जिया पानी की सुविधा उपलब्ध है। कई भाई लोग जगह साग सब्जी वाली फसलां लेवे। इंगे अलावा आपने क्षेत्र में भाई लोग जगह बाग बगीचा भी लगा रखे है और बांगो भी आप भाई लोग जगह अच्छा उत्पादन जो कुल बीमें वैज्ञानिक तौर तरीके अपनावे। इंगे सागे सागे जिया अपने कृषि से जुड़ा कई सहायक धंधा हुए और विशेष तौर जो अपने मुख्य सहायक धंधा वो है पशुपालन को। पशुपालन में किसान भाई जगह खेती पाती को काम धाम करेंगे, सागे सागे पशु भी पड़े और पशु से देखो कि टाइम सारू दूध को बेचान भी वे करे। जगह से क्या है कि धीरे धीरे मांगे आमदनी में जो कि बढ़ोतरी हुए। पर पशुपालन आप रखा तो इनमें पशुओं में कई बार सावचेती सार संभाले जो कि आपने तुरता फुर्त करनी पड़े। जगह से पशुओं से अच्छा लाभ है जो को लेस का और आने वाले जो की नस्ल है जहाँ छोटा बछड़ा बछड़ी है पाडा पाडी है जब मांगे आप टाइम सारू सावचेत सार संभाल करा तो आने वाली नस्ल है जो कि भी अच्छी आप लेस का। तो पशुओं में के आहार में नमक को भी बहुत महत्व है। आहार आप टेमो टेम भी देवा, संतुलित आहार भी देवा, हरू चारू सूखो चारू सारा भी आप देवा। पर जो को आप पशुओं ने आहार देवा भी मैं नमक की तो गुण चाहिए के भी को महत्व है बिंग के बारे में आज आप चर्चा करांगा। तो किसान भाई पशुओं द्वारा खाया जाने वाला साधारण नमक दो तत्वों सोडियम और क्लोराइड मिल गए बने। अंग्रेजी भाषा में इन्हें सोडियम क्लोराइड कहे है। किसान भाई दोनों तत्वों की पशुओं के लिए आवश्यकता हुआ शरीर में 0.2% सोडियम हुआ है। शरीर में सोडियम हड्डियाँ कोमल ऊतक शारीरिक द्रव्य में पाया जाए। शारीरिक माध्यम में अमल क्षार संतुलन बनाए रखने में नमक की आवश्यकता जो कि पड़े। किसान भाइयों नमक आंत में एमिनो एसिड और शर्करा के अवशोषण के काम आवे। पशुओं को नमक आहार के कई खाद्य पदार्थों द्वारा नमक के खिलाने से भी प्राप्त हो। शरीर में होने वाली चयापचन की क्रिया में भी काम आने के पश्चात नमक को शरीर में उत्सर्जन भी हो। किसान भाइयों नमक पशुओं के आहार खाने में चाव भी उत्पन्न कर दे। नमक से लार निकलने में सहायता मिले और लार से आहार के पचने में प्रोत्साहन मिले। किसान भाइयों पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक हुए। साधारण नमक से ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फ्लोराइड इंगे बढ़ने में सहायक हुए। कम मात्रा में नमक खाए जाने पर इंगो उत्सर्जन कम और ज़्यादा मात्रा में नमक खाए जाने पर इंगो उत्सर्जन ज़्यादा हुए। किसान भाइयों बात करें आप पशुओं के शरीर में नमक की कमी का के लक्षण हुए। ज़्यादा टाइम तक आहार में पशु ने नमक नहीं मिलने पर पशुओं के आसे पासे पड़ेड़ा कपड़ा है लकड़ी है बलमूत्र है या खोरिया है ईंट है वह जगह खाण लग जाए या चाटन लग जाए। परीक्षण और वैज्ञानिका ने वो ज्ञात करो कि जबकि गाय में नमक का पा नहीं खिलावा बांगी भूख 2-3 सप्ताह से कम हो जाए। नमक की कमी से पशु आहार की प्रोटीन और ऊर्जा को प्रयोग ठीक से कौन हुआ। नतीजो है कि पशु को शारीरिक भार कम हो जाए और दूध देने वाले पशुओं की दूध उत्पादन में भी कमी आ जाए। किसान भाइयों ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली गाय में नमक की कमी का लक्षण जल्दी और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए क्योंकि दूध के द्वारा बांगे शरीर से नमक बाहर निकल जाए और इनकी कमी ने पूरा करण खातर अपने आहार से नमक पशुओं को तो प्राप्त कौन हुआ। तो नमक की हीनता या कहने कमी का लक्षण प्रकट होने में पशु ने लगभग 1 साल को टेम है जो लाग जाए। किसान भाइयों जिया कुकड़ा के आहार में पर्याप्त समय तक नमक की कमी से बांगी बढ़वारे रुक जाए। अंडा देने वाली मुर्गियों में अंडा उत्पादन जो को कम हो जाए। आहार में नमक की पर्याप्त समय तक कम से कुकट में एक दूसरे का पंख नोचने की भी आदत है जो पड़ जाए। अब बात करें किसान भाई जो को आपने पशुधन आप रखा तो बी पशुधन में जो को आप नमक देवा तो बिंगी मात्रा जकी कितनी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ दूध नहीं देने वाले पशुओं खातर 1.67 ग्राम 100 किलोग्राम भार पर जे पशु को भार 100 किलोग्राम है 1 कुंटल है तो बिन 1.67 ग्राम नमक की जरूरत पड़े। दूध देने वाले पशुओं खातर 4.22

0: किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम भार पर। किसान भाइयों, बढ़ोतरी के खातर 1.56 ग्राम प्रति किलोग्राम भार प्रतिदिन बढ़ने वाले खातर जका वो भार 150 से लेके 600 किलोग्राम तई हुआ। गर्भावस्था का जका पशुधन है तो भी में 1.54 ग्राम प्रतिदिन 190 लेके 270 दिन के गर्भावस्था के काल के माँ। वातावरण को तापमान 25 डिग्री लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तई तो बिना 0.11 ग्राम 100 किलोग्राम भार वाले पशु ने आवजो को देना चाहिए। किसान भाई, घुलनशील नमक की मात्रा एरबिंग प्रभाव की बात करा तो 0.1 पर कोई दुष्प्रभाव कौन पड़े, 0.1 को लेकर 0.3 पर सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव कौन पड़े, कदे कदे पशुओं ने जका दस्त भी लाग जाए तो 0.3 लेकर 0.5 पर दस्त लाग जाए तो वहाँ दूध की मात्रा में कमी आ जाए। किसान में बात करा नमक प्राप्ति का के स्रोत है। आहार में सम्मिलित सगला ही खाद्य पदार्थ में नमक की कीन की मात्रा जकी पाई जाए, परंतु इनकी ज़्यादा मात्रा समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ में और मांस में पाई जाए। कुछ एक आवश्यकता की शेष मात्रा में पूर्ति साधारण नमक में दाने ने मिला गए या नमक की ईंट के रूप में चाटने के लिए पशु के ठाण में आप रख दें तो वह मात्रा भी पूरी हो जाए। चरागाह में पशुओं को साधारण सूखे की अपेक्षा 2 गुणी मात्रा में नमक प्राप्त हो जाए। ज़्यादा कच्चोपन की दशा में हरे चारे की में नमक ज़्यादा प्राप्त हो है, साइलेज में भी ज़्यादा मात्रा में नमक पशुओं ने मिलते रहे। किसान भाइयों, एक युवा पशु गाय या भैंस में एक दिन में साधारणतया लगभग 13 ग्राम साधारण नमक की जरूरत है। वैज्ञानिका ने आ बात बताई है कि 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देने वाली गाय ने लगभग 30 ग्राम नमक की प्रतिदिन जरूरत पड़े। गोवंश है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, आगे दाने में नमक की मात्रा 1 सैकड़े की दरसों मिलाई जाए। कुकटांगे दाने में 0.5 सैकड़े की दरसों। नमक की आवश्यकता ने प्रभावित करने वाला भी कई कारण है, कई बातें हैं तो बंगो अपने ध्यान जो रखना चाहिए। एक तो आहार को प्रकार पशुओं की नमक की जरूरत पर के प्रभाव पड़े। पानी में सोडियम क्लोराइड या अन्य खनिज लवणांग स्तर एक और महत्वपूर्ण कारण है। पशुओं में आमतौर पर शोषक पदार्थ 2 से 3 गुणा ज़्यादा पानी की जरूरत हो है। वातावरण को तापमान और नमी एक मुख्य कारण भी है। एक बात में आप भी देखोगे कि अगर खाने में 1.5% पोटेशियम है तो दूध ज़्यादा मात्रा में बनेगा। पोटेशियम की मात्रा सोडियम और क्लोराइड की मात्रा पर भी प्रभाव है जो डाले। किसान भाइयों, गर्मी के तनाव में पशु में बहुत मात्रा में सोडियम की कमी आ जाए तो यह मुख्य कारण है जका नमक की आवश्यकता ने प्रभावित करे। पशुओं द्वारा नमक ने खाई जाने वाली ज़्यादातर मात्रा इन बात पर निर्भर करे पशुओं ने कितों पानी की जरूरत हो है। जे पानी की असीमित मात्रा उपलब्ध हो तो पशु नमक की बहुत अधिक मात्रा ने भी सहन कर सके और आवश्यकता छूँ ज़्यादा खाए गए नमक पेशाब छूँ पशु के शरीर छूँ बाहर निकल जाए। किसान भाइयों, पानी की मात्रा होने पर आहार में 2.2% नमक छूँ भी विषैला प्रभाव प्रकट हो जाए। इनका प्रमुख लक्षण ज़्यादा प्यास लागनो, मांसपेशियों की कमजोरी, कुकटांगे चूजांगे आहार में 2.2% से ज़्यादा नमक होने पर वहाँ पर भी कुप्रभाव है जो को पड़े। किसान भाइयों, कुकट आहार में नमक की मात्रा जे 4 सैकड़े से ज़्यादा हो तो असीमित मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर भी बांगी मृत्यु जकी हो जाए। पशु आहार में खिलाए जाने वाले नमक की मात्रा पशु के निकलने वाले पसीने पर भी निर्भर करे। वो भी बात अपने वैज्ञानिका बताइए कि 1 घंटे तक पशु को पसीनों निकलने पर लगभग 2 ग्राम सोडियम की हानि हो जाए। जे ज़्यादातर उत्पादन लेने के लिए पशु ने स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि पशुओं के शरीर में होने वाली नमक की हानि और आहार शुभ प्राप्ति के बीच संतुलित बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पशु धन अच्छी तरह रख सकेगा जो को भी आपने टाइम से जगह काम धाम करना है पशुओं के आहार में नमक को कभी आपने कमी ना होनी चाहिए और पशु जब आप रखा तो बिंगा के हाव भाव है और के वो अपने चरे और धीरे धीरे अपने बिंगी सारी बातें जी रखनी चाहिए आपने समझ आओ तो ठीक है नहीं डॉक्टर जी सलाह लेनी चाहिए। तो इन तरीके से आप जो पशुओं का आहार है भी मैं नमक को महत्व बनाए तो आपने पूरी बात लिए जी ध्यान में रखते थे पशुपालन जो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है जो लेना चाहिए पर अब खेत का नहीं चलूँ। राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था पशुओं के आहार में नमक का महत्व।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है। अब जयपुर से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि से हुई। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया और हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, परंतु विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।
1: गौरतलब है कि 25 दिन तक चलने वाले मॉनसून सत्र में 19 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक निजी संस्थान के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C, साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे प्रयासों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री थार योजना 2026-2027 के तहत श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 40,67,00,000 रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना में 214 विकास कार्य शामिल किए गए हैं। इनका लाभ अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, रायसिंह नगर और श्रीगंगानगर पंचायत समिति की सीमा से सटे गांवों को मिलेगा। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, महिला सशक्तिकरण, कृषि और पशुपालन से जुड़े काम कराए जाएंगे। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 27,25,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से शुरू हो गई है। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से किया जा रहा है। इसमें राजस्थान और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के चिकित्सा विशेषज्ञ, सिंधी भाषा के विद्वान और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जाएंगे। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सलुम्बर में वीरांगना हाडारानी पैनोरमा के निर्माण के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 6,634 वर्ग मीटर सरकारी भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत नगर परिषद क्षेत्र में ये भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पैनोरमा में वीरांगना हाडारानी के शौर्य, त्याग और बलिदान से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके निर्माण से मेवाड़ के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सलुम्बर में पर्यटन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सभी 4 सदस्यों को बधाई दी है। इनमें राजस्थान के पाली जिले के निशीत कालाने भी शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत

0: पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमैटिक्स और प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे विषयों में असाधारण ज्ञान का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम पेश कर रही हैं अंकिता अरोड़ा। आइए सुनते हैं।

महिला जगत सुनने वाली सभी सहेलियों को अंकिता अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, दिग्गज गोलकीपर सविता पूनिया को भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 2026 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की महान दीवार के नाम से मशहूर हरियाणा की 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 300 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा पार कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। सविता पुनिया ने वर्षों तक भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शानदार प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और देश के लिए किए गए योगदान को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। यह उपलब्धि न केवल सविता पुनिया के लिए बल्कि पूरे भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का क्षण है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसने अपने कैरियर में संघर्षों के बावजूद इस मुकाम तक पहुंची और इसमें उनके माता-पिता के समर्थन उनके लिए बहुत ही खास रहा है। सखियों, चर्चा का विषय जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: सखियों, भारतीय हॉकी इतिहास की सबसे सफल गोलकीपरों में गिनी जाने वाली सविता ने 20 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था। इसके बाद उन्होंने खुद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में स्थापित किया। वर्ष 2025 में वह PR श्रीजेश के बाद 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय गोलकीपर बनी। ये उपलब्धि उनके लंबे और सफल कैरियर की गवाही देती है। देश भर की युवा लड़कियों के लिए सविता एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत ही उनकी सफलता की कुंजी है। लेकिन आज की पीढ़ी जल्दी परिणाम चाहती है, लेकिन खेलों में चुनौतियों और संघर्ष सफर का हिस्सा होते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सविता पुनिया भारतीय खेल की एक सच्ची आइकॉन है। एक खिलाड़ी के लिए पद्मश्री एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसने एक दशक से ज़्यादा समय तक भारत के गोल पोस्ट की रक्षा की है और अपनी प्रतिभा, साहस और नेतृत्व क्षमता से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो बहनों, अब हम सुनते हैं एक और गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, अंग दान का संकल्प किसी जरूरतमंद के लिए वस्तुतः एक जीवन दान है। मृत्यु के पश्चात या जीवित रहते हुए सही समय पर अंगों जैसे हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े, अंगनाशय, आँख आदि का दान कर किसी मरणासन्न व्यक्ति को नया जीवन दान दिया जा सकता है। सखियों, एक व्यक्ति का अंग दान 8 लोगों की जान बचा सकता है और उत्तक दान से कई अन्य लोगों की दृष्टि

जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। दुनिया भर में अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों और उपलब्ध अंगों के बीच भारी अंतर है। यह संकल्प जरूरतमंदों को अंग दिलवाने में मदद करता है। सखियों, अंगदान यह सुनिश्चित करता है कि किसी प्रियजन की दुखद मृत्यु को भी एक जीवन रक्षक वरदान में बदला जा सकता है। सखियों, चर्चा को जारी रखेंगे, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियों, अंगदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। अंगदान के नियम क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो

सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु के बाद अंगदान के लिए सहमति दर्शाने वाला पंजीकरण फॉर्म भरना शामिल है। दाता रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराकर व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करने की इच्छा व्यक्त करता है। ये छोटा सा कार्य दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सखियों किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उनके अंगों को प्रत्यारोपण के लिए प्राप्त किया जा सकता है। उच्च कुशल चिकित्सा दल सावधानी पूर्वक दान के शरीर से उपयुक्त अंगों और ऊतकों को निकालते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया सम्मानजनक और गरिमापूर्ण हो। फिर इन अंगों को संरक्षित किया जाता है और रक्त समूह, ऊतक अनुकूलता और चिकित्सा आवश्यकता जैसे कारकों के आधार पर उपयुक्त प्राप्तकर्ताओं के साथ मिलान किया जाता है। सखियों, अंग प्रत्यारोपण एक चमत्कारिक प्रक्रिया है जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। यह अंतिम चरण के अंग विफलता से जूझ रहे लोगों को आशा प्रदान करता है, जिससे उन्हें फिर से पूर्ण जीवन जीने का मौका मिलता है। चाहे वह हृदय दान हो जो हृदय की धड़कन को ठीक करता है, यकृत दान हो जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को बहाल करता है, या गुर्दा दान हो जो किसी व्यक्ति को डायलिसिस से मुक्ति दिलाता है, प्रत्येक अंग प्रत्यारोपण जीवन को बदल देने वाली घटना है। आपका एक नेक कदम आपके जाने के बाद भी किसी और के शरीर में धड़कता रहता है। यह मानवीय संवेदना और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। और लीजिए आनंद इस प्यारे से गीत का।

सखियों, घर की रसोई हर एक गृहिणी के जीवन का एक अहम हिस्सा होती है, जहाँ पर रोज़ नए नए पकवान बनाकर अपने परिवारजनों का दिल जीतती हैं। लेकिन मैनू, क्या आप जानती हैं कि घर की रसोई से आप एक व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं? वास्तव में घर से खाने पीने का व्यवसाय शुरू करना कई लोगों के लिए एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी पसंद का खाना पकाने, अपने हिसाब से काम करने और अपनी रसोई से काम करने का मौका मिलता है। ये रेस्टोरेंट किराए पर लेने के लिए भारी खर्च के बिना खाने के प्रति अपने जुनून को वास्तविक आय में बदलने का सबसे आसान तरीका है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सही योजना, परमिट और रचनात्मकता के साथ कोई भी छोटे स्तर शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। सखियों, घर से खाना बनाने का व्यवसाय शुरू करने का मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं। यह बेकिंग करना, सॉस बेचने का छोटा मोटा सा व्यवसाय, स्थानीय स्तर पर डिलीवरी करने वाला ऑनलाइन फूड बिजनेस, या फिर प्री ऑर्डर या पॉपअप फैमिली मील के ज़रिए घर के रेस्टोरेंट शुरू करने का ट्रायल रन भी हो सकता है। अगर बहनों आप अभी तक निश्चित नहीं हैं, तो उन खाद्य पदार्थों से शुरुआत करें जिन्हें बार बार बनाना आसान हो, पैक करना आसान हो और जल्दी ख़राब भी ना हो। बेक्ड सामान, मसालों का मिश्रण, सॉस, चटनी और मिठाइयाँ आमतौर पर शुरुआत करने के लिए सबसे आसान खाद्य पदार्थ होते हैं। सखियों, चर्चा का विषय जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

बहनों, आप अपने घर की रसोई में खाद्य पदार्थ बनाते हैं और उन्हें राज्य के भीतर बेचते हैं, तो आपको अपने खाद्य पदार्थ पर सही लेबल लगाना होगा, जैसे उत्पाद का नाम, आपका नाम और पता, सामग्री, तारीख, ताकि उत्पादों का पता लगाया जा सके। सखियों, घर से खाद्य व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बस ये चीज़ें चाहिए, जैसे आपके राज्य में वैध उत्पाद, एक साफ़ सुथरी रसोई, सही ढंग से लेबल लगे हुए अपने ग्राहकों तक अपना भोजन पहुंचाने का एक तरीका और एक बुनियादी व्यवसाय सेटअप। सखियों, तय करें कि आप कैसे खाद्य सामग्री बेचेंगी, टेक अवे, ऑनलाइन या दोनों। आप इसे दो आसान तरीकों से कर सकती हैं। पहले ऑर्डर लें और फिर पिकअप का समय तय करें, या अपने क्षेत्र में सीमित डिलीवरी करें। यह स्पष्ट करें कि खाना ऑर्डर पर बनाया जाता है, जिससे यह अधिक ताज़ा लगता है और इससे आपको ज़्यादा खाना पकाने से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आप ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो एक या दो खास प्रोडक्ट से शुरुआत करें और उन्हें नियमित रूप से पोस्ट करें। डिश को दिखाते हुए छोटे वीडियो बनाएं और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में बताएं। शुरुआत में पेमेंट का तरीका बैंक ट्रांसफ़र या कैश ऑन डिलीवरी रख सकती हैं। सखियों, भले ही आपका व्यवसाय छोटा है, लेकिन एक ब्रांड की तरह व्यवहार करें। एक व्यावसायिक नाम चुनें, सोशल मीडिया पर एक जैसे रंग और शैली का प्रयोग करें और अपने खाने को अच्छे से पैक करें। एक अच्छी पैकेजिंग से लोग आपको याद रखते हैं। लोगों वाले कस्टम बॉक्स का इस्तेमाल करने से एक आकर्षक और भरोसेमंद छवि बनती है। इस प्रकार बहनों, आप घर के बने खाने से घर पर ही व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। और अब सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, सेब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों में से एक है। इस लाल रंग के फल के अनेक लाभ हैं। सेब का मीठा और रसदार स्वाद बहुत पसंद किया जाता है। वैज्ञानिक भाषा में सेब को मेलस डोमेस्टिका कहा जाता है। सेब की 7500 से अधिक किस्में हैं। लाल रंग के सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और यही वजह है कि लाल रंग का सेब एंटी एजिंग फल माना जाता है। इसके अलावा पीले और हरे रंग के सेब में ढेर सारा क्यूरेसेटिन होता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। सेब से त्वचा भी स्वस्थ, सुंदर, मुलायम और चमकदार बनती है। हालांकि सेब के बीजों का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। सखियों, सेब में प्रचुर मात्रा में एंथोसियानिन और टैनिन होता है। इस फल में खूब विटामिन्स, फाइबर्स और अनेक पोषक तत्व होते हैं जिनमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। सेब आपको भरा हुआ महसूस कराते हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी होता है। यह आपको वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। सखियो, रोजाना 100 से 150 ग्राम सेब खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। रोजाना सेब खाने से कुल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जो लोग प्रतिदिन एक से अधिक सेब खाते हैं उनमें कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। सखियो, बातें तो और भी करेंगे, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियों सेब में मौजूद पेक्टिन एक प्रोबायोटिक फाइबर के रूप में कार्य करता है जो आपकी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण देता है। यह आपके पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया के प्रकारों के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। सखियों सेब फेफड़ों, कोलोरेक्टल, स्तन और पाचन तंत्र के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। रोजाना कम से कम एक सेब खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। सेब में मौजूद पॉलीफेनॉल्स कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोककर कैंसर से लड़ते हैं। सेब के छिलकों में पाया जाने वाला क्वेरेस्टेनिन सूजन से साथ जुड़े दमा से लड़ने में मदद करता है। सेब के यौगिक नए मस्तिष्क न्यूरॉन्स बनाने में मदद करते हैं जो सीखने और याददाश्त को बढ़ावा दे सकते हैं। जो लोग सेब खाते हैं उनमें अक्सर अवसाद के लक्षण कम दिखाई देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सेब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग होने की संभावना को कम करते हैं। फाइबर पाचन तंत्र में मदद करता है और कब्ज़ की समस्या को कम कर सकता है। तो बहनों, आप भी अपने आहार में सेब को शामिल कर रहिए चुस्त और दुरुस्त। और अब लीजिए आनंद एक और गीत का।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा

0: पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

0: प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR

0: हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका चंद बहुत प्यारे प्यारे प्यार भरे गानों के साथ।
4: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आपने ये बहुत ही खूबसूरत गाना सुना। शैलेंद्र ने गाना लिखा, संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म थी संगम और ये प्यारी प्यारी आवाज़ें थी मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, धूल का फूल फिल्म से आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की है। गाना साहिर ने लिखा है और संगीत एन दत्ता का। आइए सुने।
1: आसरा चाहता हूँ,

के मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ। वफा

आप सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म का ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवाते हैं कहीं दिन कहीं रात फिल्म का ये गाना। आवाज़ें इस बार है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। गाना SS बिहारी ने लिखा है और संगीत OP नैयर का। सुनिए।

कहीं दिन कहीं रात फिल्म का ये गाना आपने सुना, आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। और कार्यक्रम में अब सुनिए मजबूर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, सुनें।

आपने मजबूर फिल्म का ये खूबसूरत गाना सुना, और अब सुनिए दामन और आग फिल्म का ये गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत ने ये गीत लिखा है और संगीत है शंकर जयकिशन का। आइए सुनें।

आप सुन रहे थे दामन और आग फिल्म का ये खूबसूरत गाना, और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मालिक फिल्म का ये दो गाना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं। गाना राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। सुने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम, इंतज़ार करें।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रिडिज पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामा-आरा के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुर्द बुर्द के जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हम मनसब के साथ वफ सतह की बातचीत की और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इन

एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी, केपी धनापालन और प्यारे लाल शंखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी। स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अकार ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वह ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोर गुल के तनाजुर में सदर नशी को कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब दोनों ही समरावर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की राह हमवार हो जाती है। वजीर आजम ने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें उतनी ही लामहदूद है जितना कि खुद खला है। जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगमील और कई कामयाबियां हासिल की हैं जिससे हर शहरी फख्र के जज्बे से सरशार है। वजीर आजम ने कहा कि खा ये कौमी मंजरनामा हो, बैन अक्वामी प्लेटफॉर्म हो और अब हत्ता के खला में भी भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाजाराई से भारत जैसे मुल्कों के लिए बड़े बहरान की कैफियत पैदा हो गई है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल डीजल एलपीजी कीमियावी खाद और केमिकल्स के ताल्लुक से कई तरह की रुकावटें और बहरान पैदा हुए। जनाब मोदी ने कहा कि इसके बावजूद भारत ने दुनिया में सबसे तेज रफ्तार बड़ी मईशत के तौर पर उभरते हुए 7.7% की शरह तरक्की बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे और अतियात वगैरह में मुबैना खुर्द बुर्द की मुनसिफाना और मुकर्रर वक्त के अंदर तहकीर ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाजाराई से भारत जैसे मुल्कों के लिए बड़े बहरान की कैफियत पैदा हो गई है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल डीजल एलपीजी कीमियावी खाद और केमिकल्स के ताल्लुक से कई तरह की रुकावटें और बहरान पैदा हुए। जनाब मोदी ने कहा कि इसके बावजूद भारत ने दुनिया में सबसे तेज रफ्तार बड़ी मईशत के तौर पर उभरते हुए 7.7% की शरह तरक्की बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे और अतियात वगैरह में मुबैना खुर्द बुर्द की मुनसिफाना और मुकर्रर वक्त के अंदर तहकीकात कराए जाने की अपील की गई है। इस मामले से मुतालिक चार दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच करेगी। इधर उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तशकील दी गई खसूसी जांच टीम SIT ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मोहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके जिसमें

0: भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मोल्दोवा के दौरे में भारत और मोल्दोवा ने बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इसमें ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, सेहत, दवासाजी, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल, पब्लिक बुनियादी ढांचा, मसनू जहानत और इख्तरा शामिल हैं। मोल्दोवा की अपने हम मनसब माया सांदू के साथ दो तरफा बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोनों मुल्कों ने हालिया वर्षों में की गई पेशरफ्त का जायजा लिया और उन शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने से इतफाक किया जो दोनों मुल्कों के आवाम की तरक्की, खुशहाली और बहबूद के लिए अहमियत के हामिल हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इकतसादी इश्तराक भारत मोल्दोवा साझेदारी का अहम सुतून है। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में मोल्दोवा में चिसिनाव हवाई अड्डे पहुंचने पर मोल्दोवा के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मिहाई पॉपसोही ने गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। चिसिनाव में सदारती महल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मोल्दोवा की सदर माया सांदू ने पुरतपाक अंदाज से उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर से भी मुलाकात करेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। शिमाल मशरकी रियासत आसाम में भारतीय फौज ने सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाई में सरकार की मदद के लिए ऑपरेशन जल राह शुरू किया है। मशरकी आसाम के कई हिस्सों में सैलाब का पानी आ गया है। उधर बालाई आसाम के कई जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। रियासत में लगातार बारिश होने से हजारों लोग मुतासर हुए हैं। बालाई आसाम के कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। भारतीय फौज कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी और रियासती फोर्स NDRF और SDRF के अहलकारों को सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर जिलों शिवसागर और जोरहाट में बचाव कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है। सैलाब से 8 जिले मुतासर हैं। इनमें धीमाजी, डिब्रूगढ़, कमखिया, लखीमपुर, शिवसागर और जोरहाट शामिल हैं। ईरान और अमेरिका ने लगातार 9वें दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने जुनूब मगरबी ईरान में होरमोज कस्बे को निशाना बनाया जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी अहलकार के हवाले से बताया है कि अमरीकी हमले की वजह से बूशहर सूबे में दश्ती काउंटी के इंतजामी मरकज होरमोज के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। इत्तला के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्सेस से वाबस्ता फौजी ठिकाने शामिल हैं। उधर उर्दुन के सरकारी नशरियाती इदारे ने कहा है कि मुल्क के फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान से दागे गए 3 मिजाइलों को बीच में ही मार गिराया गया जबकि चौथा मिजाइल जुनूबी उर्दुन के दूर दराज इलाके में आकर गिरा। अलबत्ता जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मीडिया इत्तलात के मुताबिक ये मिजाइल जुनूबी उर्दुन के साहली शहर अकबा में अमरीकी फौज के तैयारों को निशाना बनाकर दागे गए थे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मौसूनी इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामा राय के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मौसूनी इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुर्द बुर्द किए जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज चिसिनाव में मोल्दोवा की अपनी हम मनसब के साथ वफ सतह की बातचीत की और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

अपनी चंद सहेलियों के साथ नाजारा ये गजल पढ़ रही हैं। गजल के अख्तिताम पर सब सहेलियां मकान से बाहर आ जाती हैं तो एजाज साहब उनसे गजल गाने वाली लड़की का नाम जानना चाहते हैं, मगर सब हंसती हुई चली जाती हैं। अगले दिन मशारे में डॉक्टर महमूद अपनी मजाहिया गजल पढ़ते हैं। चिलमन के पीछे से बहुत सी नाजीन भी मशारा सुन रही हैं। एजाज साहब माइक पर आते हैं, अंदर लड़कियां हैरान हैं कि शायर इंकलाब और गजल। एजाज साहब वही रात वाली गजल सुनाते हैं तो सब लड़कियां हैरान होती हैं और एजाज साहब को बुरा भला कहती हैं। एजाज साहब तरन्नुम में गजल पढ़कर मशायरा लूट लेते हैं।

0: नाजारा चिलमन के पास एजाज साहब को बुलाती है और
1: साथ हो गई मुलाकात हो गई।
0: एजाज दफ्तर में जाते हैं और कातिब को वही गजल अपने अखबार में इशाद के लिए किताबत करने को कहते हैं। लोग हैरान हैं कि एजाज साहब गजल की इशाद कराना चाहते हैं जबकि उनके पर्चे की पॉलिसी के मुताबिक इस पर्चे में गजलें शाया नहीं की जाती। नास की सहेलियां उसको अखबार दिखाती हैं कि एजाज ने उसकी गजल को अखबार में शाया कर दिया है। तब सब सहेलियां तय करती हैं कि एजाज को जरूर कोई सबक सिखाना चाहिए। नाज उसको फोन करती है और लगावट की बातें करके शाम को यमुना किनारे मिलने के लिए बुलाती है। इधर दफ्तर में तमाम इंतजामिया पर्चे में गजल की इशाद से नाराज होकर एजाज से इस्तीफा देने को कहते हैं। एजाज फौरन इस्तीफा दे देते हैं। शाम को नाज अपनी मुलाजमा के शोहर को काला बुर्का पहनाकर और हाथ में गुलाब का फूल देकर यमुना किनारे इंतजार करती है। एजाज हाथों में गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचते हैं और बोते में छुपे हुए मर्द को नाज समझकर खूब तारीफें करते हैं। नाज पेड़ के पीछे छुपकर खूब मोहब्बत की बातें करती है। जब नाज के बजाय पोशीदा मर्द नकाब उलट देता है तो एजाज का खूब मजाक होता है और वो कसम खाता है कि वो जिंदगी में सब खुद भूल सकता है मगर वो आवाज नहीं भूल सकता जिस आवाज में उसने वो गजल सुनी थी। नाज अपनी सहेलियों के साथ शतरंज खेल रही है तभी अख्तर नवाब वहां आ जाते हैं और ईद के मौके पर कव्वाली का प्रोग्राम रखने की बात करते हैं। मगर नाज कहती है कि क्यों ना शायर इंकलाब एजाज को बुलाकर एक नशिश्त का प्रोग्राम किया जाए। अख्तर नवाब के घर नशिश्त में एजाज ने नज्म ताजमहल सुनाई। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। एक दिन नाज एजाज के दफ्तर में फोन करती है। तब उसको पता चलता है कि इश्क में बीमार होने के सबब एजाज दफ्तर से निकाल दिए गए हैं। तब नाज को बहुत अफसोस होता है। नाज सिर्फ एजाज के बारे में ही सोच रही है। दूसरी तरफ एजाज की बहन कौसर उसकी परेशानी का सबब पूछती है तो वो बहन को बताता है कि किस तरह वो किसी के इश्क में गिरफ्तार होकर खुदा को मानने लगा है और उस वक्त उसके फिराक में है। ईद के दिन कौसर किसी तरह से नाज का खत उसको लाकर देती है और ईदी मांगती है। दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं। नवाब साहब के घर सब दोस्त जमा हैं और ईद की सिवैयां खा रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि नवाब साहब अगर इजाजत हो तो बिटिया को भी ईदी दिलाऊं। डॉक्टर महमूद मिर्जा साहब को अंदर ले जाते हैं। वहां अख्तर नवाब नाज से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मिर्जा साहब मालूम करते हैं कि ये साहब कौन है तो डॉक्टर महमूद बताते हैं कि मरहूम चाचा जान के बेटे हैं। अख्तर नवाब कहते हैं कि खूब मजाक बना लो, आखिर एक दिन आना तो मेरे ही घर है। तब नाज कहती है इस गलत फहमी में ना रहना। मिर्जा साहब नाज और अख्तर दोनों को ईदी देते हैं और महमूद मियाँ को अलग ले जाकर कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी मालूम हो रही है। अख्तर नवाब अपनी गाड़ी में नवाब साहब की कोठी से बाहर निकल रहे हैं तभी एजाज भी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। दोनों ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अख्तर नवाब कहते हैं कि शायर इंकलाब यहाँ क्यों आ गए, कहीं चचा नवाब ने गोली चला दी तो ये शायर इंकलाब मारा जाएगा। ऊपर बालकनी से नाज ये सब देख लेती है और खुश होती है कि एजाज अपनी बहन कौसर के साथ नवाब साहब की कोठी में दाखिल होते हैं। एजाज कहते हैं कि क़िबला नवाब साहब आपसे ईद मिलने में तो अल्लाह याद आ गया। नवाब साहब कहते हैं कि शुक्र है तुम्हें अल्लाह याद तो आया। कौसर ऊपर जनान खाने में नाज और उसकी सहेलियों के पास जाती है और ईद की मुबारकबाद सबको पेश करती है। नाज हाथों में सिवैयों का प्यारा लेकर आती है तो उसे शबनम बताया जाता है। कौसर शबनम की तारीफ करती है और शबनम से एक गजल सुनाने की फरमाइश करती है। नाज एक शर्त पर गजल सुनाने को तैयार हो जाती है कि कौसर को घुंघरू बांधकर नाचना होगा। कौसर मान जाती है और गजल शुरू हो जाती है।

नाचते नाचते कौशल पर दौरा पड़ता है और डॉक्टर महमूद को इलाज के लिए बुलाया जाता है। दोनों में पहले तकरार होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पानीबाग में एजाज वादे के मुताबिक नाज से मिलता है। दोनों मोहब्बत के जज्बात से सरशार एक दूसरे में खोए हुए गाना गाते हैं।

नवाब साहब शिकार से वापस आ जाते हैं। नवाब साहब दोनों के एक दूसरे की आगोश में देख लेते हैं। नाज खौफ से कांपने लगती है और एजाज वहाँ से छुपकर भाग जाते हैं, मगर नवाब साहब उसको पहचान लेते हैं और गुस्से में भरी हुई बंदूक निकाल कर एजाज को जान से मारने के लिए चल देते हैं। नाज उनको रोकने और कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर खौफ की वजह से उसके हलक से आवाज़ नहीं निकलती और वो गूंगी हो जाती है। नवाब साहब एजाज के घर पहुंच जाते हैं। एजाज बहुत शर्मिंदा होता है, वो उसको गाड़ी में बैठने को कहते हैं और गाड़ी चल देती है। अगली बार गाड़ी अख्तर नवाब के मकान पर रुकती है। नवाब साहब अख्तर नवाब से भी गाड़ी में बैठने को कहते हैं। उधर नाज खुदा के हुजूर में एजाज की जान की हिफाजत के लिए दिल में दुआ मांगती है। नवाब साहब दोनों नौजवानों को बाग में ले जाकर एक चबूतरे पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम 20 कदम पीछे हटकर गोली चलाएंगे और जो नौजवान बच जाएगा उससे नाजारा की शादी कर दी जाएगी। एजाज फौरन ये शर्त कबूल कर लेता है, मगर अख्तर नवाब आनाकानी करते हैं। नवाब साहब गोली चलाने के लिए तैयार होते हैं, वो 1, 2, 3 कहते हैं, तभी अख्तर नवाब उनको रोक देते हैं और इस मुकाबले से अलग हो जाते हैं। नवाब साहब एजाज की बहादुरी की तारीफ करते हैं और नाजारा से उसकी शादी की मंजूरी दे देते हैं। घर जाकर एजाज फौरन टेलीफोन करके नाज को यह खबर सुनाता है और टेलीफोन पर ही उस गजल को सुनाने की फरमाइश करता है, मगर नाज कुछ बोल नहीं पाती। एजाज अपनी कसम दिलाते हैं, तब नाज टेलीफोन रख देती है और एजाज के ख्यालों में खो जाती है। हुजरा उरूसी में नाज आरा मुंतजिर बैठी है और दूल्हा की शक्ल में एजाज उसके करीब आकर कहता है कि वही गजल एक बार फिर सुना दो। नाज बोलने की कोशिश कर रही है, मगर अल्फाज उसके गले में फंस कर रह जाते हैं। एजाज उसको गूंगा समझ कर उजरा उरूसी छोड़कर चला जाता है। ख्वाब से घबरा कर नाज बेचैन

जाती है और दिल में सोचती है कि गूंगी बनकर एजाज की दुल्हन बनने से बेहतर है मर जाना। अगले रोज एजाज मंगनी की रस्म के तौर पर एक तोहफा लाकर नवाब साहब से कहता है कि वो ये कबूल फरमाए। नवाब साहब खुश होकर खुद ही नाज के कमरे में तोहफा लेकर जाते हैं और उसे खुशी खुशी तोहफा दिखाते हैं। नाज एक पर्चा लिखा हुआ अपने बाप नवाब साहब को देती है। इस पर्चे में उसके बचपन से इस तरह के दौरे पड़ने की बात कही थी। नाज ने आगे लिखा था कि वो चीख कर इस वक्त एजाज की जिंदगी की भीख मांगना चाहती है। नवाब साहब उसको गोली मारने जा रहे थे और तभी उसकी आवाज उसके हलक में अटक गई और अब वो गूंगी बनकर एजाज की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती और वो एजाज के लिए मर चुकी है। नवाब साहब एजाज को बताते हैं कि नाज उससे शादी करना नहीं चाहती। एजाज को बहुत दुख होता है और हैरानी भी। नवाब साहब बेचैनी के आलम में बाहर चले जाते हैं और एजाज नाज के कमरे में ऊपर पहुंच जाता है, मगर राह में ही नाज का पर्चा उसको दिया जाता है जिसमें शादी करने से माजरत की बात लिखी हुई है। एजाज आगे बढ़कर नाज के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाता है और नाज से कहता है कि सिर्फ अपनी जुबान से ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी जा रही है। वो उसी आवाज में ये बात सुनना चाहता है जिस आवाज में पहली बार उसने गजल सुनी थी, मगर नाज कुछ नहीं बोल पाती और एजाज वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अख्तर नवाब वहां आते हैं और चलते चलते नाज के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां अख्तर नवाब को नाज का लिखा हुआ वो पर्चा मिलता है जो एजाज के हाथ से छूट कर वहीं गिर गया था। मुंह लटकाए एजाज घर में दाखिल होता है और सबको बताता है कि अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि नवाबजादी नाजारा उससे शादी करना नहीं चाहती। सब परेशान हो जाते हैं। कौशल जाकर डॉक्टर महमूद से मिलती है और इस शादी से इनकार की वजह मालूम करना चाहती है। वहां धोखे से डॉक्टर महमूद के मुंह से ये बात निकल जाती है कि नाज गूंगी हो चुकी है इसलिए शादी से इनकार कर रही है। तब नवाब साहब बताते हैं कि उन्होंने नाज के बचपन में एक बार उसकी माँ से बहुत चीख कर गुस्से में बात की थी और नाज को भी डांट दिया था। तब उसकी माँ की आवाज बंद हुई थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ये कि किसी हादसे की वजह से नाज की आवाज दोबारा अपने आप खुल सकती है। नवाब साहब अख्तर नवाब को घर बुलाते हैं और बंदूक हाथों में लेकर अख्तर नवाब की तरफ से दिए गए शादी के पैगाम को इस शर्त पर मंजूर कर लेते हैं कि उनकी अगली बात सुनने के बाद अख्तर नवाब ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो अख्तर नवाब को गोली मार देंगे। अख्तर नवाब मंजूर कर लेते हैं। तब नवाब साहब बताते हैं कि उनकी बेटी नाज गूंगी हो चुकी है। नवाब साहब के डर से अख्तर नवाब रिश्ता मंजूर कर लेते हैं, मगर 50,000 रुपये इंग्लैंड में तालीम हासिल करने के लिए नवाब साहब से फरमाइश करते हैं। नवाब साहब नाज के कमरे में जाकर उसको बताते हैं कि अब वो चाहते हैं कि नाज की शादी अख्तर नवाब से कर दें। नाज बहुत परेशान होती है मगर बाप के हुक्म के आगे सर खम कर देती है। अख्तर नवाब एजाज मियां के घर मिलने जाते हैं और एजाज को बताते हैं कि उनकी शादी नवाब बाकर अली खान की लड़की नाजारा बेगम से हो रही है। इसमें शिरकत करके आप सेहरा जरूर पढ़िएगा। एजाज को बहुत दुख होता है मगर शादी में शरीक होने और सेहरा पढ़ने का वादा कर लेता है। निकाह होने वाला है तभी एजाज वहां पहुंच जाता है। अख्तर नवाब खुद खड़े होकर एजाज का इस्तकबाल करते हैं और नवाब से कहते हैं कि निकाह से कबल एजाज मियां मेरी मोहब्बत में लिखा हुआ सेहरा पढ़ेंगे। इधर नाज की सहेलियों ने नाज को ये बात बता दी कि एजाज साहब आ गए हैं, एजाज सेहरा पढ़ता है।

अख्तर नवाब फिर फिसल जाते हैं और बगैर रकम दिए ही मरने के डर से इस रिश्ते से सुबुकदोश हो जाते हैं। नवाब साहब एक बार फिर एजाज पर फख्र का इजहार करते हुए उससे नाजारा की शादी की मंजूरी दे देते हैं और सब मेहमानों की मौजूदगी में उसी वक्त एजाज की शादी नाजारा से कर दी जाती है। नाजारा और एजाज दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म कहकशां प्रोग्राम के तहत गजल फिल्म की कहानी और नगमे। कहानी को तरतीब दिया था मसूद अल्तमश ने। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनिए फिल्मी नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से ये नगमा भी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुनिए, फिल्म है अंधा कानून।

जाएगा बाद मेरे ओ अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में।

महेंद्र कपूर, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था संगम फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। ये नगमा हमने लिया है शरीफ बदमाश फिल्म से।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को अभी आप सुन रहे थे सात रंग के सपने फिल्म में। अब सुनिए आशा भोसले को, फिल्म का नाम है खुशबू।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये नगमा आपने आक्रमण फिल्म से सुना। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है आशु भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है खिलाड़ी।

खिलाड़ी फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और कुमार सानू का गाया हुआ। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उनके प्रसिद्ध शब्द थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी कि यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका उद्देश्य चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव उपलब्धियों को सम्मान देना। दोस्तों, चंद्रमा सदियों से मानव की कल्पना, साहित्य और विज्ञान का केंद्र रहा है। हमारी लोक कथाओं, कविताओं, त्योहारों में चंद्रमा का उल्लेख मिलता ही है। बच्चों के लिए चंद्रमा दोस्तों चंदा मामा है, तो कवियों के लिए सौंदर्य और शांति का प्रतीक। विज्ञान के क्षेत्र में

का अध्ययन हमें पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में काफी हेल्प भी करता है। दोस्तों, भारत ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित चंद्रयान मिशनों ने विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाया। विशेष रूप से चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना दिया। दोस्तों, आज विश्व के अनेक देश चंद्रमा पर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आने वाला समय अंतरिक्ष विज्ञान का होगा, युवाओं का होगा, और युवाओं के लिए यह क्षेत्र रोजगार, शोध और नवाचार की असीम संभावना लेकर आया है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। चंद्रमा तक पहुंचने का सपना भी कभी असंभव माना जाता था, लेकिन मानव के दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक सोच ने इसे संभव बना दिया। यह दिवस हमें सिखाता है कि जिज्ञासा, मेहनत और ज्ञान के बल पर कोई भी लक्ष्य इजीली प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के इस अवसर पर हम विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने, नई खोजों को अपनाने और देश को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लें। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम का पहला फिल्मी गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: दोस्तों, हम बात करेंगे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर इस विषय पर। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति केवल रीति रिवाजों, वेशभूषा और त्योहारों का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि यह जीवन जीने की पद्धति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यही हमारी वास्तविक धरोहर मानी जाती है। दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, परंपराएं और जीवन शैलियां हमें देखने को मिलती है। फिर भी अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। यही हमारी संस्कृति की शक्ति तो है, जो हमारे त्यौहार दीपावली, होली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, रक्षाबंधन हमें प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना, प्रकृति से प्रेम करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, साथ ही मानवता की सेवा करना सिखाती है। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे ग्रंथ हमें जीवन के उच्च आदर्शों का मार्गदर्शन करते हैं।

योग और आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन परंपराओं को आज पूरा विश्व अपना रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। वास्तव में संस्कृति किसी देश की आत्मा ही तो होती है। यदि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो अपनी पहचान भी खोने लगेंगे। आज वैश्वीकरण और आधुनिकता के इस दौर में नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। युवा पीढ़ी पर विशेष जिम्मेदारी है कि वह अपनी भाषा, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करे ताकि आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुँचाया जा सके। दोस्तों, हमारी धरोहर केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और हमारे नैतिक मूल्य ही हमारी अमूल्य धरोहर है। इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार समाज अपनी संस्कृति से शक्ति प्राप्त करता है। तो हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अपनी धरोहर को संजोए रखना चाहिए और विश्व में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली पहचान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। संस्कृति है राष्ट्र की पहचान, इसी से बढ़ता देश का मान। लीजिए, इसी विषय को आगे भी हम बढ़ाएंगे, इसी विषय पर हम चर्चा और भी करेंगे। आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, इस विषय को लीजिए। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में कुछ और बातें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है परिवार व्यवस्था। हमारे यहाँ परिवार केवल लोगों का समूह नहीं, बल्कि संस्कारों की पाठशाला है। माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमारी संस्कृति की विशेष पहचान रही है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यानी माता पिता और गुरु को देवतुल्य मानना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। योग हमारी भारतीय संस्कृति का अमूल्य उपहार है। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। योग केवल व्यायाम नहीं दोस्तों, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। इसी प्रकार आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो प्राकृतिक उपचार पर आधारित है। भारतीय संस्कृति प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना सिखाती है। नदियों को यहाँ माता का दर्जा दिया गया है, वृक्षों की पूजा की जाती है, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखा गया है। आज जब विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है, तब हमारी सांस्कृतिक शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, यह संदेश केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता

विविधता का भी है। हमें अपनी संस्कृति को जानना, समझना और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे आज के युग में कितने ही डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों ना आ गई हो, आज का युग आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का युग कहलाने लगा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। पहले की महिलाएं काम करती थी, उनके पास टाइम भी होता था, और आजकल मशीनी युग बन चुका है, लेकिन हमारे किसी के पास भी समय नहीं है। यदि हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो हमारी पहचान भी कमज़ोर हो जाएगी, और युवा पीढ़ी तो राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इसीलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय संस्कृति के प्रति मूल्यों को अपनाएं, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, लोक कला लोक साहित्य को संरक्षित रखें, सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर केवल विचारों तक सीमित नहीं दोस्तों, ताजमहल, कुतुब मीनार, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, राजस्थान के किले या फिर और कई ऐतिहासिक स्मारक जो हमारी गौरवशाली विरासत के प्रतीक है, इन सभी का संरक्षित संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। लीजिए इस विषय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक व्यक्ति ने अपने बेटे से पूछा, यदि तुम्हें अपनी पहचान बतानी हो तो क्या बताओगे? बेटे ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार, समाज और देश की संस्कृति से पहचाना जाता हूँ। यही उत्तर हमारी सांस्कृतिक चेतना का सार है। दोस्तों, संस्कृति हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ती, बल्कि भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि विकास और परंपरा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इसी विषय के अंत में यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना केवल एक सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनना चाहिए। तो आइए आज से ही संकल्प लें, भारतीय संस्कृति के आदर्शों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी गौरवशाली धरोहर की हम रक्षा करेंगे। संस्कारों की ज्योति जलाएं, भारत का गौरव बढ़ाएं, संस्कृति की इस अमर धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, अब हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय में पूरे विश्व के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है और जिसका सीधा संबंध युवाओं के भविष्य से ही है। विषय है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और युवाओं का भविष्य। दोस्तों, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कभी जो बातें केवल विज्ञान कथाओं में दिखाई देती थी, वे आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट उपकरणों के बाद अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। इसे हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोस्तों वह टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मशीनों और कंप्यूटर्स को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और मानव की समस्याओं का समाधान कर सके।

यानी मशीनों को बुद्धिमान बनाने की प्रक्रिया ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है दोस्तों। आज हम जब अपने मोबाइल फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी के सुझाव देखते हैं, सोशल मीडिया पर पसंद के अनुसार सामग्री प्राप्त करते हैं या फिर किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं एआई हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि मानव सभ्यता के विकास में हर टेक्नोलॉजी ने क्रांति ने नए अवसरों को जन्म दिया। आधुनिक क्रांति ने उत्पादन के नए साधन दिए, कंप्यूटर क्रांति ने सूचना जगत को बदल दिया और एआई टेक्नोलॉजी ने क्रांति मानव जीवन को नई दिशा देने जा रही है। आज दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, अंतरिक्ष, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में एआई का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स रोगों की पहचान के लिए एआई का यूज़ करने जा रहे हैं। किसान फसल की स्थिति जानने के लिए एआई आधारित टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं के साथ ही स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार एआई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है कि एआई का युवाओं के भविष्य से क्या संबंध है? तो वास्तव में युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आज के युवा ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग की ओर बढ़ेंगे, प्रशासक बनेंगे या फिर कोई उद्यमी बनेंगे। इसलिए समझना ज़रूरी है कि एआई उनके जीवन में क्या उपयोग लेकर आएगी, उनके भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं अवसरों की। दोस्तों, एआई ने रोजगार के नए क्षेत्रों का निर्माण किया। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइंस सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एआई इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में लाखों नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाले समय में वे युवा अधिक सफल होंगे जो टेक्नोलॉजी को समझेंगे और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को हैंडल कर सकेंगे। एआई शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला रही है। पहले विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पुस्तकों पर ही डिपेंड करना रहना पड़ता था, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्ञान दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त किया जा सकता है। एआई आधारित शैक्षिक उपकरण विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन रही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा वह है जो मनुष्य में निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करे। एआई इस दिशा में विद्यार्थियों की सहायता कर सकती है, क्योंकि यह प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, एआई केवल रोजगार नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता के नए द्वार भी खोल रही है। आज अनेक युवा स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से नई समस्याओं का समाधान भी खोज रहे हैं। हमारा देश दोस्तों विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप केंद्रों में से एक बन रहा है। हालांकि एआई के अनेक लाभ है, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर है। अनेक लोग यह आशंका व्यक्त करते हैं कि एआई मशीनें मानव श्रमिकों का स्थान ले लेंगी। कुछ कार्य जो पहले मनुष्य अपने हाथों से किया करते थे, अब मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो इससे कुछ पारंपरिक नौकरियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि नई टेक्नोलॉजी कुछ नौकरियां समाप्त करती है और अनेक नई नौकरियां रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती है। इसलिए आवश्यकता है कि भयभीत होने की नहीं, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। यदि युवा आज नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे तो वे भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। भारत

युवाओं का देश है, हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग युवा ही तो है। यदि भारत के युवा एआई और आधुनिक टेक्नोलॉजी को सही दिशा में अपनाएं तो भारत विश्व के तकनीकी नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। एआई के इस युग में युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण गुण विकसित करने चाहिए। पहला, निरंतर सीखने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। समस्या के समाधान की क्षमता होनी चाहिए। संचार कौशल और साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारी। दोस्तों, आज के युवाओं को बड़े सपने देखने होंगे। उन्हें केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बनने का प्रयास करना चाहिए। तकनीकी राहों में आगे बढ़ना है, ज्ञान के दीपों से जग को गढ़ना है। एआई का युग नई उड़ान लेकर आया है, युवाओं के सपनों को आसमान दिलाया है। सीखो, बढ़ो और नया इतिहास बनाओ।

सीखने की आदत डालनी चाहिए, दूसरा रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, समस्या के समाधान की क्षमता होनी चाहिए, संचार कौशल और साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारी। दोस्तों आज के युवाओं को बड़े सपने देखने होंगे, उन्हें केवल टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बनने का प्रयास करना चाहिए। तकनीकी राहों में आगे बढ़ना है, ज्ञान के दीपों से जग को गढ़ना है। एआई का युग नई उड़ान लेकर आया है, युवाओं के सपनों को आसमान दिलाया है। सीखो बढ़ो और नया इतिहास बनाओ, भारत के उज्जवल भविष्य को साकार बनाओ। लीजिए बातें तो आगे भी चलती रहेगी, आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों देखिए तो सब समय को संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया है। हमारे पैसे कहीं खो जाते हैं, फिर से हम उसे कमा सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय दोस्तों कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए इस प्रसिद्ध कहावत को आप सभी ने सुना होगा, जो कबीर जी के द्वारा लिखी गई, काल करे सो आज, कर आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। हम एट प्रेजेंट जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमारा अगला पल, अगला सेकंड क्या हो सकता है। हम जीवित भी रह सकते हैं या नहीं, या फिर आने वाला पल कैसा होगा, कुछ नहीं जानते। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले सभी महान व्यक्तियों ने समय के महत्व को समझा, उसका सदुपयोग किया। विद्यार्थी जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन करते हैं और अपने समय का सही यूज करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर ही लेते हैं। दोस्तों एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्य को एक खाली कांच का जार दिया। गुरु ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और पूछा, क्या जार भर गया है? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, जार तो भर गया। फिर गुरु ने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले, कंकड़ पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गए। गुरु ने फिर पूछा, अब भर गया है? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ। तब गुरु ने उसमें रेत डाल दी, रेत भी खाली स्थान में भर गई। फिर गुरु ने समझाया, यह जार तुम्हारा जीवन है, बड़े पत्थर तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और लक्ष्य। यदि पहले इन्हें स्थान नहीं दोगे तो बाद में इन्हें के लिए जगह नहीं बचेगी। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देना ही समय का सही सदुपयोग है। महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, लोस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, यानी खोया हुआ पल, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के डिजिटल युग में समय का टाइम वेस्ट होने के साथ साथ मोबाइल फोन, सोशल

0: मनोरंजन के अन्य माध्यम उपयोगी भी है, लेकिन उनका अत्यधिक यूज हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है, जिसका हम सभी को संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय का उपयोग केवल पढ़ाई, अपने काम तक सीमित नहीं, बल्कि हम अपने समय का भाग कुछ अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, समाज की सेवा और आत्मविश्वास के लिए भी कर सकते हैं। आसपास के वातावरण को देखिए। अपने सपनों को सच करने से पहले आपको अपने सपने देखने होंगे। दोस्तों, केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपनों को साकार करने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, यही 24 घंटे एक सफल व्यक्ति को ही मिलते हैं। किसी सफल व्यक्ति को भी उतना ही टाइम मिलता है। अंतर केवल इस बात का होता ही कि कौन अपने समय का सही यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करता है। हमें प्रत्येक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। समय जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है, वह जीवन की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जाता है। समय बड़ा बलवान है, इसकी रखो पहचान। जो इसका सम्मान करे, बढ़ता उसका मान। क्षण क्षण से बनता जीवन, पल पल देता संदेश। समय का जो सदुपयोग करे, सफलता मिले विशेष। दोस्तों, हम पैसे खर्च करते हैं, कमाते हैं, खोए हुए समय को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय निरंतर चलता रहता है और यह किसी के लिए इंतजार नहीं करता। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, समय के साथ पैदा होते हैं, अपने जीवन काल अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। अक्सर हमने लोगों से सुना है कि वह इंसान काफ़ी बलवान है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता तो दोस्तों, उसका समय होता है। टाइम अच्छा है तो व्यक्ति भी बलवान कहलाता है। अपनी जिंदगी में सकारात्मकता बनाए रखें, दूसरों को भी सकारात्मक रहने के लिए कहें। दोस्तों, हमारे आने वाला कल, आने वाला पल कैसा होगा, हम में से कोई नहीं जानता। हम होंगे या नहीं, इसलिए जो हमारे पास टाइम है, उसी में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों के साथ भी सकारात्मकता के साथ बिहेव कीजिए। हमें नहीं पता होता कि सुबह होगी या नहीं, फिर भी हम अलार्म सेट करते हैं, क्योंकि एक उम्मीद होती है हमारे पास। आइए आपको सुनाते हैं अब कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।
1: पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम।
3: बॉडीगार्ड, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।

दोस्तों, इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जो आज की घटनाएं घटित होती है वो इतिहास बन जाती है। विश्व में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई आज ही के दिन जो ऐतिहासिक घटनाएं बन चुकी हैं। लीजिए जानेंगे आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन एडमंड हिलैरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोहियों में से एक जिनका जन्म हुआ 1919 में, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। 1810 में कोलंबिया ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन की। आज इस स्वतंत्र दिन को कोलंबिया के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में आज ही के दिन यानी 20 जुलाई के दिन ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली मानव बने। दोस्तों, आज ही के दिन 1976 में अमेरिका के वाइकिंग वन यान ने मंगल ग्रह की सतह की पहली स्पष्ट तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। दोस्तों, ये तो जाना हमने आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का एक आखिरी फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम DRM चैनल पर 909 किलोहर्ट्ज पर, FM पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। संध्या के 6 बज चुके हैं। इस वक्त आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। पहले सुनिए हमारे आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल। इस कार्यक्रम में कृषि संबंधी जानकारियां, जैसे कीटनाशक छिड़काव करते समय सावधानियां, मुर्गी पालन लाभकारी व्यवसाय, इसके अलावा समसामयिक चर्चा, बालिका शिक्षा अति आवश्यक, उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव, इनके अलावा इस कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत लोक भजन आप सुना करते हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप संध्या 7:45 पर सुनेंगे। इसके अलावा कुछ फिल्मी गाने आपके लिए रात को 10:13 से रात्रि 11 बजे तक सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8 बजे संसद समीक्षा होगी। रात्रि 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाई जाएगी। संसद की ये रिकॉर्डिंग आप 10 बजे से 10:13 तक सुनेंगे।

अभी आपने आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। अब हम आपको बताएं कल के दिन आप जो कार्यक्रम सुनेंगे उनमें मुख्य मुख्य कार्यक्रम ये रहेंगे और उनका ये समय रहेगा। वंदना कार्यक्रम सुबह 6:10 पर, तत्पश्चात आप सुनेंगे चिंतन। चिंतन में स्वामिनी सत्यप्रभा अपने विचार रखेंगी जीवन में सरलता विषय पर। किसान भाइयों के लिए हमारे केंद्र से प्रातः 7:10 पर खेतिया नावास्ते कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आप जानकारी लेंगे कल फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था, रामचरितमानस का सस्वर पाठ मानस गान सवेरे 7:20 पर होता है। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भाग संख्या 311 का पाठ। सुप्रभात। इस कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप जिन विषयों पर बात सुनेंगे वे हैं, गुण पूजित है विवेकशील बने, दुख सुख प्रदाता प्राणी। इन्हीं विचारों से मेल खाते कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे इस कार्यक्रम सुप्रभात में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सवेरे 8:08 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर समाचार उर्दू में प्रसारित किए जाएंगे। सुगम संगीत में भजन आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। फिल्मी गाने दिन में 11:00, एक ही शीर्षक से प्रोग्राम 12:05 पर कहानी शीर्षक रहेगा कल के दिन फिल्मी गानों का। घर आंगन में दिन में 1:05 पर बुजुर्गों का सम्मान व घर के संस्कार, कुटीर उद्योग व योजनाएं, प्राकृतिक तरीकों से निखारे रूप और राजस्थान का प्रमुख भोजन, राजस्थानी लोकगीत इस कार्यक्रम में सुनवाए ही जाएंगे। युवाणी कार्यक्रम संध्या 5:00 होगा। चौपाल कार्यक्रम संध्या 7:00 आप सुनेंगे। हम अपने सुनने वालों को बताएं कल 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो गुरबंद। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे श्रीपाल शर्मा और कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया। इस कार्यक्रम में आप हमें दिन में 11:00 से 11:30 तक फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01509-220992 और 220993। कार्यक्रम रात 9:15 पर होगा और इस कार्यक्रम के लिए आप हमें फोन दिन में 11:00 से 11:30 तक इन बताए नंबरों पर कर सकते हैं। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय अब सराइकी का है।

0: एकांत विच बैठा विया, बस कुदरत को ही हेक टक निहारदा हम। ओह प्रकृति प्रेम तो इतने प्रभावित हन कि हुन्ने दी नज़र विच प्रकृति दे अगो नारी सौंदर्य भी घट है। ओ लिखदन, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं मैं कैसे लोचन। पंत जी दे काव्य विच जिज्ञासा दे नाल ही रहस्य भावना भी नज़र आउंदी है। प्रथम रश्मि ते मौन निमंत्रण एंजे ही रचनावां हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिणी पाया तूने यह गाना। हिंदे तो अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी दे प्रकृति नाल जुड़े हुए कई एंजी कविता भी हैं, जिन्हें विच उन्हां दे गहन ते सूक्ष्म निरीक्षण दे नाल ही हुने दी आध्यात्मिकता भी दिखाई देंदी है, जिमें नौका विहार ते एक तारा खास है, जिंदा उदाहरण तुहाडे सामने है। गंगा के जल चल में निर्मल कुमला किरणों का रक्तोपल है, मूंद चुका अपने मृदु दल, लहरों पर स्वर्ण रेखा सुंदर पड़ गई नील, ज्यो अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। इन्हें पंक्तियों विच गंगा दे जल विच रक्तोपल यानी लाल कमल दी वांगर सूरज दे बिंब दा डूबना ते गंगा दी लहरां ते शाम दी सुनहरी आभा दा हौले हौले नीलिमा विच बदलना, कवि दे प्रकृति दा बहु ही बारीकी नाल निरीक्षण ते हुंदी गहन रंग चेतना दा परिचय देंदे। लेकिन कविता दे आखिर विच हिने पंक्तियां विच गंगा दे जल विच रक्तोपल यानी लाल कमल दी वांगर सूरज दे बिंब दा डूबना ते गंगा दी लहरां ते शाम दी सुनहरी आभा दा हौले हौले नीलिमा विच बदलना, कवि दे प्रकृति दा बहु ही बारीकी नाल निरीक्षण ते हुंदी गहन रंग चेतना दा परिचय देंदे। लेकिन कविता दे आखिर विच कवि ने एक तारे दे बाद बहु सारे तारे उदय दी आत्मा ते जग दर्शन आख के अपनी दार्शनिकता भी दर्शाई है। इवें ही नौका विहार विच कवि ने गर्मिये विच गंगा को एक तापस बाला दे रूप विच भावहीना चित्रण करेंदे हुए आखिर विच जगत दी शाश्वतता दा स्पष्ट इशारा कीते। पंत जी ने लिखिया है, प्रकृति दे सोहणे रूप ने ही मेकू लुभाया है, तां ही हुंदा काव्य विच इस्तेमाल कीता है। कुदरत दे सोहणे रूप को ग्रहण करन दी वजह नाल पंत जी दे कारण ही पंत जी विच मनन ते चिंतन दी शक्ति आई ते हुन्ने हिंदी साहित्य को स्वर्ण काव्य प्रदान कीते। अगर हुन्ने को बाढ़ या उल्का दी प्रकृति नाल लगाव हुंदा ते फिर पंत जी निराशावादी कवि होंदे। पंत जी दे पिता जी इलाहाबाद कचारी कोलो प्रकृति दे सोहणे नज़ारियां विच वसे एक घर विच रहिंदे हन। अजाणे कारणा तो हिने दे पिता जी कर्जा ही थी गए, आदन अपना कर्जा लावण कीते, अपनी सारी जमीन जायदाद ते अपना घर तक वेचना पै गया। 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रा नंदन पंत एक महान लिखाड़ी ही दुनिया कोलो रुखसत थी गए। सच पुछो ते अपनी रचनावां दे जरिए ओ अज भी साडे विच जिंदा हैं, मौजूद हैं। हुने दी हर रचना हुना दे थीवण दा एहसास करवेंदी है। एक गल भी काबिले गौर है कि पंत जी दे काव्य विच प्रकृति एक जड़ वाली कार निर्जीव ना थी के जींदी जागदी सत्ता है, हुंदे रूप विच दिसदी है। सवेर शाम बदल मीह ठंडी मिठी रुत नदी झरना भौरे तितलियां पंछी सबे कुछ हुने को बहु प्यारे हन। ये हर रचना काव्य लिखत विच उन्होंने जिक्र भी किते ते तुसा साक्षात दीदार भी कर सकते वे। पंत जी ने इत्ती रचनावां लिखन के प्रकृति पुत्र दे नाल नाल ए युग पुरुष बन गए। लखां लखां वंदन हिने दी रचनावां को ते सादर नमन शत शत नमन प्रकृति दे सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को।
1: हुणे आप सुनदे पए हावे एक वार्ता प्रकृति दे सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। आओ हुण सुनदे हैं कवि सुरेंद्र सिंह चांदना जी दा काव्य पाठ।
2: स्वच्छ वातावरण।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी की जयपुर स्मय केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पेश किया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ी। कल से 31 अगस्त तक फॉलोअप कैंप लगेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही। और राज्य में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में आज पेश किए गए शपथ पत्र के अनुसार प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि इसके बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 17 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 20 सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना 23 सितंबर को जारी होगी और इन्हें 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर समय सारणी भी अदालत में पेश की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में चल रही विकास परियोजनाओं और जनहित के कामों की प्रगति की समीक्षा की। श्री शर्मा ने राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों में कई परिवादियों से सीधे बातचीत की। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को हर प्रकरण का जवाबदेही के साथ समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में आमजन को राहत देने के लिए चलाए जा रहे शहरी

0: और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया, इससे ज्यादा नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अनुसार 21 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में फॉलोअप कैंप लगाए जाएंगे। इनके जरिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को विभिन्न सेवाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। उदयपुर जिले के कुछ बच्चों को अवैध रूप से तमिलनाडु ले जाते हुए गोवा से बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से उन्हें वापस लाया गया। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के नाम पर राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था। मामले में तथाकथित रूप से धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के इन कथित मामलों से क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ने का भी खतरा है।
1: क्या अवैध तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था? ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और इसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक FIR हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज तीर्थ यात्रियों का दल काठमांडू के लिए रवाना हुआ। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर से तीर्थयात्रियों की इस बस को नई दिल्ली हवाई अड्डे के लिए हरी झंडी दिखाई। ये दल काठमांडू की हवाई यात्रा करेगा और वहां पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन सहित अन्य स्थलों का भ्रमण करेगा। राजधानी जयपुर में इस साल दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले लोक मंथन कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू की गई है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज बैठक ली। पर्यटन भवन में हुई इस बैठक में लोक मंथन आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर भी विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मंथन सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और राष्ट्र चिंतन का महाकुंभ है। इसका 5वां संस्करण 4 से 6 दिसंबर को जयपुर में होने जा रहा है।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई लगातार बाधित रही। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर हुए शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई, जिसे बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के शोरगुल के बीच ही लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य न्यायाधीशों की संख्या की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सक्रिय मॉनसून की तरह संसद का सार्थक सत्र पूरे देश के लिए लाभकारी होता है। प्रधानमंत्री ने पिछले एक महीने की भारत की उपलब्धियों पर गर्व जताया। श्री मोदी ने कहा कि देश में युवाओं को अनुकूल वातावरण मिल रहा है, इससे नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिली है।
3: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो सच्चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से

0: बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं।
1: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में बनने वाले सैनिक स्कूल की आज आधारशिला रखी। हाथीखेड़ा में ये राजकीय बालिका सैनिक स्कूल करीब 20 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बनने वाले इस स्कूल में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल मैदान सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्री मौके पर देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इस स्कूल का निर्माण कार्य करीब 15 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब डिजिटल परामर्श व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इन संस्थानों में ई प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इससे मरीजों को अस्पताल में लाइन लगने और कागजी पर्ची बनवाने से मुक्ति मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगी को डिजिटल टोकन नंबर दिया जाएगा। ओपीडी में तैनात चिकित्सक बीमारी, जरूरी जांचों और दवाओं का ब्यौरा सीधे ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे पूरा विवरण मरीज के आभा हेल्थ कार्ड से जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य

0: करने का फैसला लिया है। इससे मरीजों को अस्पताल में लाइन लगने और कागजी पर्ची बनवाने से मुक्ति मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगी को डिजिटल टोकन नंबर दिया जाएगा। ओपीडी में तैनात चिकित्सक बीमारी, जरूरी जांचों और दवाओं का ब्यौरा सीधे ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे पूरा विवरण मरीज के आभा हेल्थ कार्ड से जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया गया है। इसके तहत अधिक जोखिम और गंभीर स्थिति वाली प्रसूताओं की देखभाल के लिए विशेष यूनिट शुरू की गई है। इस इकाई में जटिल चिकित्सकीय स्थिति वाली प्रसूताओं की सभी जांचें विशेषज्ञ डॉक्टरों की सतत निगरानी में होगी। इस इकाई में मुख्य जाँचों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हाड़ौती क्षेत्र के खानपुर, पनवाड़ और सांगोद के किसानों को राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की पहल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भवरासा बांध से हरीशचंद्र सागर परियोजना की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे धान की फसलों को बचाने की उम्मीद बढ़ गई है। श्री नागर ने बताया कि बारिश की कमी से ये फसलें सूख रही थी, पानी से इन्हें नया जीवन मिला है।
1: पर लगभग ज्यादा तो किसान धान करते हैं, वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान साथ के, और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी, लेकिन वो जो सूख रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें भवरासा डैम से पानी छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सिंचाई विभाग को, और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का, खानपुर का, पनवाड़ क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो ये बोरीना, अमृतकुआ, किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसानों को राहत मिलेगी।
0: राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सामान्य 145 मिलीमीटर बरसात के आंकड़े के मुकाबले अब तक 113 मिलीमीटर पानी ही बरसा है। 24 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहीं 15 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। सिर्फ बीकानेर और चूरू में ही सामान्य से अधिक पानी बरसा है। हालांकि प्रदेश में एक बार फिर बरसात की गतिविधियों के सक्रिय होने से मानसून का दूसरा चरण शुरू हो गया है। भरतपुर जिले के कई इलाकों में आज झमाझम पानी बरसा। बुसावर, वैर, बयाना और नदवई में जोरदार बरसात हुई और ठंडी हवाएं चली। उधर डीग में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। धौलपुर में भी बीती रात से शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर रुक रुक कर आज भी चलता रहा। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 22 और 23 जुलाई से इन संभागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अच्छी बरसात की कामना के लिए लोक आस्था से जुड़ी परंपराएं निभाई जा रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में आज पारंपरिक जुलूस निकाला गया और लोकगीतों के साथ अच्छी वर्षा की प्रार्थना की गई। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारियों से मुलाकात की। लोकभवन में उन्होंने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस पर श्री बागड़े ने उन्हें बधाई और शुभकामना दी, साथ ही उनसे ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम पेश किया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ी। कल से 31 अगस्त तक फॉलोअप कैंप लगेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही। और राज्य में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने सीकर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जनकल्याण, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सीकर जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि यमुना जल परियोजना का MOA होना

0: रहा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA किया गया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। योजना में हाथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए शेखावटी क्षेत्र सीकर, चूरू और झुंझुनू तक पानी पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शेखावाटी ज्ञान सभा में शिरकत की। कार्यक्रम का विषय शिक्षा, संस्कार और विकसित भारत रहा। श्री बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि नीट 2026 के परिणामों में राजस्थान का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत उत्कृष्ट रहा है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, फिर भी इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। जिला न्यायाधीश रूपा गुप्ता के निर्देश पर सीकर जिला मुख्यालय के निजी छात्रावासों की जांच के आदेश जारी किए गए। जिला प्रशासन को छात्रावासों के पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, छात्र सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 15 जुलाई से स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बैठकें आयोजित कर चिकित्सा अधिकारियों, ANM और आशा सहयोगिनियों को प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान कर अलग से निगरानी रखने और सभी जाँचों का रिकॉर्ड अद्यतन रखने पर भी जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों को आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों ने नर्सरी का भ्रमण किया। उन्हें पौध तैयार करने की प्रक्रिया, पौधरोपण की विधि और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज शिष्टाचार और अन्य विषयों का भी अभ्यास कराया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के संबंध में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन माध्यम से भी सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन में शैक्षणिक सत्र 2027-2028 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। जिले के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय प्रशासन के अनुसार चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। मॉनसून के दौरान संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पंप हाउसों के संचालन, जल निकासी, सड़क मरम्मत, जर्जर भवनों की पहचान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य सरकार हाई कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश किन्नो। OBC आयोग री रपट 5 अगस्त ताई मिलेला। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की मियाद बधी, कालों 31 अगस्त ताई फॉलोअप कैंप लगाया जावेला। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई में विपक्ष रा सदस्यों रा हंगामा रा कारण अड़चन आई और राज्य में बिरखा ओजो

0: सरूफी मौजूदा रुतमाए हाल ताएं करीब 21 फीसदी कम में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायतां और स्थानीय निकायां रा चुनाव रो काम 15 नवंबर ताई पूरो कर लियो चावेला। इबारा माए आज राज्य सरकार री ओरों राजस्थान हाई कोर्ट माए हलफनामो पेश करी चियो। इ पाछे गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढारी अर्जी माथे सुनवाई करता थका हाई कोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित री खंडपीठ कहो के ई मियाद पाछे सरकार ने चुनाव करावण सारू और बगत नी दियो चावेला। राज्य सरकार री ओरू महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शपथ पत्र अदालत सामी पेश कीनो। महाधिवक्ता कहो के 5 अगस्त ताई ओबीसी आयोग री रपट पेश करती चावेला। वे बतायो के इं पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओरू 17 अगस्त ने निकाय चुनाव री अधिसूचना जारी करी चावेला और 20 सितंबर ताई चुनाव करा लिया चावेला। पंचायत चुनाव री अधिसूचना 23 सितंबर न जारी करी चावेला और 15 नवंबर ताई पंचायत चुनाव रो काम पूरो कर लियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राज उन्नति जुड़िया कामकाज रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे प्रदेश माए चाल रहा विकास रा कामा और जनता रा भला रा कामा री प्रगति रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जायजो लीनो। श्री शर्मा राजस्थान संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल माथे शिकायत करण वाला हुई सीधी बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री संबंधित अहलकारा ने हर मामला रो जवाबदेही सागे टेम सर निपटारो करण रा हुकम दीना। मीटिंग रे दौरान राज्य में जनता रा काम आसानियों करावण सारू चलाया जा रहा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां री मियाद बधार 31 अगस्त ताई करण रो फैसलो करी चियो। इन तहत कालू 31 अगस्त ताई आखा राज्य में फॉलो अप कैंप लगार मामला निपटाया जावेला। उदयपुर जिला रा कुछ बच्चा ने गैर कानूनी तौर तमिलनाडु ले जावण री भगत गोवा छुड़ाई चिया है। ये पाछे पुलिस और बाल कल्याण समिति री मदद वन पाछा लाई चिया। आम बच्चा ने भणाई लिखाई रा नाम पर राज्य बाहर ले जावण और कथित तौर वारा धर्म माय बदलाव री कोशिश री शंका जताई ची है। उदयपुर रा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खत लिखकर ई मामला री आला दर्जा री जांच करावण री मांग कीनी है। कागज माए रावत कथित मानव तस्करी रा ई मामलाओं हल्का माए भाईचारा रो माहौल बिगड़बा री शंका जताई
1: कि अवैध तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है और इसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक एफआईआर हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज यात्रुओं रो दल नेपाल री राजधानी काठमांडू सारू रवाना भयो। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर यात्रुओं री ई बस ने नई दिल्ली हवाई अड्डा सारू रवाना कीनी। ओ दल हवाई जहाज रे जरिए काठमांडू पुगेला जठे पशुपतिनाथ मंदिर रा दर्शन सागे दूजी ठौड़ा रो दौरो करेला। राजधानी जयपुर माए ई साल दिसंबर महीना माए लोक मंथन कार्यक्रम राख्यो जावेला। इनरी तैयारियां रो जायजो लेवन सारू उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मीटिंग माए लोक मंथन आयोजन री रूपरेखा और व्यवस्थावां रा बारा माए चर्चा करी ची। इस दौरान देश परदेश आवण वाला नुमाइंदा ने हिफाजत और दूजा इंतजाम रे बारा माए विचार करी चियो। ध्यानजोग है कि सांस्कृतिक विविधता परंपरावां और राष्ट्र चिंतन रा कार्यक्रम लोक मंथन रो 5वो संस्करण 4-6 दिसंबर ताई जयपुर में फैला।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे

0: का बहुत बड़ा काम होगा।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन आज विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रा कारण कार्रवाई में अड़चन आई। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा रा मामला माथे चर्चा री मांग करता था का करी जा शोर शराबा बीच है। लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई कई दफा टालनी पड़ी जिनने बाद माए काल ताई टाल दी री जी। लोकसभा में विपक्षरा सदस्यां रा शोरगुल बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशां री तादाद बढ़ावन रो बिल पेश कीनो। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 रो मकसद जजां री तादाद मौजूदा 33 हूँ बधार 37 करनो है। सत्र शुरू होने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के सक्रिय मानसून री भांत संसद रो सार्थक सत्र पूरा देश सारू फायदेमंद फै है। प्रधानमंत्री देश का न्यू लारला एक महीना माय हासिल करी जी उपलब्धियां माथे गर्व जतायो। श्री मोदी कहो के देश माय नौजवाना ने बरकत सारू जरूरी वातावरण मिल रहे है जिणु नुआ काम करण और उद्यमिता ने बढ़ावो मिलियो है।
2: जहाँ तथ्य होते हैं जहाँ तर्क होते हैं वहाँ तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है तथ्य मजबूत है तो सत्य चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता। मैं आशा करता हूँ तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूँ।
1: अजमेर रा हाथीखेड़ा माए टाबरिया सारू सैनिक स्कूल खोलियो चावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज इनरा काम री नींव रखी। ई मौके श्री देवनानी कहो कि राज्य सरकार बजट माए इनरो ऐलान की नो हो और ओ स्कूल लगभग 15 महीना माए बन चावेला। समग्र शिक्षा अभियान रा तहत करीब 20 एकड़ हल्का माए बनाया जावन वाला ई सैनिक स्कूल रा काम माथे लगभग 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला। आ स्कूल खुलिया पाछे अजमेर देश माए लड़कियां री सैनिक स्कूल वाला कुछ चुनिंदा शहरा माए भेड़ो भेजावेला। कोटा जिला रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माए अब डिजिटल परामर्श व्यवस्था ही मुहैया कराई जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग आ संस्थाना माए ई प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था लागू करण रो फैसलो कीनो है। इनु मरीजा ने अस्पताला माए लेना माए लाग और पर्ची बनावन री जरूरत नी पड़ेला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा रजिस्ट्रेशन काउंटर माथे मरीजा ने डिजिटल टोकन नंबर दियो जावेला। ओपीडी माए डॉक्टर बीमारी जरूरी जांचा और दवाइयां रो ब्यौरो ऑनलाइन दर्ज करेला। इनु मरीजा नी पूरी जानकारी आभा स्वास्थ्य कार्ड नु जुड़ जावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा राज्य निदेशक डॉक्टर जोगाराम इबारा माए हुकम जारी करती ना है। भीलवाड़ा रा महात्मा गांधी अस्पताल माए घना जोखिम वाला गंभीर हालात वाली नुओ जापो वेवन वाली मायड़ा री सार संभाल सारू खास यूनिट बनाई ची है। ई यूनिट माए एड़ी मायड़ा री सगली जांचा विशेषज्ञ डॉक्टरां री लगातार निगरानी माए करी जावेला। ई इकाई माए खास जांचा 24 घंटा करी जावेला। हाड़ौती हलका रा भंवरासा बंधाऊ हरीशचंद्र सागर परियोजना री नहरा माए पानी छोड़ियो जा रियो है। इनु खानपुर पनवाड़ और सांगोद रा किसाना री धान री साख बचावन री उम्मीद बध की है। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर बतायो के बारिश री कमियों सूखन लागी साखा ने इनु नुवी जिंदगी मिली है।
3: पर लगभग ज्यादा तो किसान धान करते हैं, वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान साथ के, और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी लेकिन वो जो सूख रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें भौरासा डैम से पानी छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सिंचाई विभाग को और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का, खानपुर का, पनवाड़ क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो बोरीना अमृत कुआ किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसानों को राहत मिलेगी।
1: चूरू जिला माए तारानगर रा प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश स्वामी राष्ट्रीय बागवानी मिशन रा तहत फलां रो बगीचो लगार खेती रो कामयाब मॉडल विकसित कीनो है। वे कहो कि इनु खेती माए खर्चो कम वेवन सागे उपज

0: बधी है।
1: मैंने यहाँ अपने खेत में लगभग 12 बीघा में अनार के पौधे लगा रखे हैं, 2 बीघा में किन्नू है, मौसमी है, और उसके अलावा 6 बीघा में खजूर भी लगा रखे हैं। इस प्रकार से हम लोग परंपरागत रूप में और जैविक खेती के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं।
0: अरे भाई मौसम, राज्य में मौजूदा चौमासा की ऋतु में हाल तक करीब 21% कम में बरसियो है। हालांकि प्रदेश का कई हल्का में बिरखा ओजू स्वरूप हैगी है। भरतपुर जिला रा भुसावर वायर बयानार नदबाई माए झमाझम बारिश हुई। डीग माए संवारे हुई छांटो छिटको वेरियो है। धौलपुर माए बीती रात शुरू हुए हल्की बरसात रो दौर रुक रुक कर आज ही चालतो रहो। ये बीचे चौखी बरसात री कामना सागर डूंगरपुर माए आज पारंपरिक जुलूस निकाली जियो और लोक गीता सागर चौखा में सारू प्रार्थना करी जी। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। राज्य सरकार हाईकोर्ट माए पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश कीनो। ओबीसी आयोग री रिपोर्ट 5 अगस्त ताई मिलेला। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की मियाद बधी। काल 31 अगस्त ताई फॉलो अप कैंप लगाया जावेला। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई में विपक्ष रा सदस्यों रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। राज्य में बिरखा ओजू सरूफी। मौजूदा रुत में हाल ताई करीब 21% कम में बरसियो। सागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बजे हैं। आइए ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम सुने चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने भरूभाई की घणी घणी राम राम मोकली मोकली राम राम। भारत देश आज प्रगति के पथ पर है और इनमें पूरी भागीदारी अगर आप देखा तो अपनी बेटियां की भी है। बेटियां ने पढ़ावा, बेटियां ने बचावा, इन पर आगे और चर्चा कर सबसे पहला सुनावा भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनियो भजन, बात करा आपां बेटी पढ़ाणगी और बेटी बचाणगी। तो बिंग मां पहला बात करा आपां बेटी बचाणगी। हालांकि अब बहुत कम इसी घटना में सुनने ने मिले कि बेटियां ने परिवार का कोनी अपनाई, लेकिन फिर भी कई जगह पाइया सुना कि जद बच्ची गर्भ में हुए तो लुक छिप गए कठे न कठे सुनन में आवे कि भाई आज भी ईसा लोग बैठे है जिका जांचा करवावे, बच्चियां को गर्भपात करवा दे। तो इन अगर आपां बिया सोचा कि जे बेटियां नहीं रही तो बहुआं कठुआ सी और आपनो वंश किया चलेगो, तो बेटियां बचानी जरूरी है। बिंगे बात बात करा बेटियां ने पढ़ाणगी, जे पढ़ाणगी भी आपां बात करा तो आज सरकारां इतनी मदद करन लग रही है कि बच्चियां ने कॉलेज तई पुगण वास्ते स्कूटी तक देन लग रही है। हर तरीके की सुविधा जी की है वह बच्चियां ने सरकार उपलब्ध कराने लग रही है। सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्था है, बने पढ़ने वास्ते किताबां तई मुहैया होने लग रही है, कॉलेजों के अंदर व्यवस्था है और अठे तक कि बच्चियां जब पढ़ जाए तो बां वास्ते पद भी आरक्षित सरकार कर रखे है के आम पर खाली बेटियां ही लाग सी। तो कठे ही आपने जोर को नियावे बेटियां ने बचावा, बेटियां ने पढ़ावा और बने कामयाब होने को पूरो मौको देवा, ताकि बंगे अंदर जी की प्रतिभा है बा प्रतिभा बंगे जीवन में काम आवे बा उबर के आवे। जे वे नौकरी ना भी लागे तो अगले घर जावे तो आपके बच्चा ने भी कामयाब कर सके।

पढ़ेड़ा माई तो वह जना, बच्चा भी जी का है वह पढ़ाई का नहीं, सोरा चाल जे। तो जरूरी है बच्चा ने बेटियां ने पढ़ानो भी, पहला बचानो है फिर बाने पढ़ानो है। और पढ़ेड़ी एर जे नौकरी लाग जाए तो सोने पर सुहागो है, एर बिंग है बाद में बात करा सबू बड़ी कुप्रथा जी की आज के समय के अंदर बेटियां वास्ते यहाँ माना कि भी बेटी बोझ हो है, तो बात दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा जे अपनी बेटी नौकरी लागेड़ी हो सी तो बात भी दहेज की भी कौन चाल सी। तो जरूरी है कि बेटी ने बचावा, बेटी ने पढ़ावा और भी ने नौकरी लगावा, ताकि आपा ने दहेज जिसी कुप्रथाओं भी लारो छूट सी। बात चीता और कर सुन लिया एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनियो गीत किसान भाइयों, अब समय है आपने कीटनाशक छिड़काव को, जिका किसान भाई किसानी करे वे छोटी छोटी बातों की जो सावधानी रख है कीटनाशक छिड़काव में, तो जिकी दुर्घटनावां हुए, कोई अप्रिय घटना हुए, वे घटित को नहीं हुए और सिर्फ आपने सावचेत रह गए जे आप छिड़काव करा कीटनाशकों को तो आप स्वस्थ रह सका और कोई भी इसी घटना घटित होने बच सका। सब से पहला तो आप जिको भी कीटनाशक खरीद के लियावा बिंगी मियाद देखा कि भाई वो पहला ही खराब तो को नहीं उड़ो पे, बिंगे बाद में जब आप घरे लियावा बिना घरे लियावा या ढाणी में लियावा या खेत के माँ कमरे के माँ रखा तो बिन ताले में रखा टाबरा से दूर रखा। और विशेष बात आ है कि जब भी आप छिड़काव करना हो तो आप कोई डब्बो खोलना, थैली खोलना, पैकेट आवे आजकल बै खोलना तो मुँह छू ना खोलना, बिना ब्लेड छूँ कैंची छूँ काट के। और जब अपनो पूरा डब्बो खाली हो जाए, थैलियाँ खाली हो जाए, पैकेट खाली हो जाए, बने सुरक्षित स्थान पर रखा जब तई पाने दूर ली जागे खड्डो खोद गए और बिंगमा बुरा ना। आप कई बार डब्बा जी कह खुला छोड़ दें या डांगरा ना आप पानी पियाने वास्ते रख देवा तो आ डब्बा को इस्तेमाल आप बिल्कुल दोबारा कौन करना और आने तोड़ गए और दरडे गां बूर देना है। कीटनाशक जब भी छिड़काव करा पा तो शरीर को लगभग भाग जी को है वो आपने ढक लेनो चाहिए, बाकी शरीर पर कपड़ा अपना पैरेडा हुआ है, बिंग अलावा नाक है, मुंह है, आँखों पर चश्मों लगा लेवा या कठई जे घाव ओढ़ो है तो बिना चौकी तरियाँ ढक लेवा। छिड़काव हमेशा आप हवा के विपरीत ना करा, पक्ष में करा, क्योंकि विपरीत अगर आप छिड़काव करो तो वो अपने शरीर पर ही आवे और घटन घटा अपने नुकसान कर सके। छिड़काव

छिड़काव जी को समय वो हमेशा सुबह शाम को रखा, और जब भी छिड़काव करा तो बिल्कुल खाली पेट ना करा, कि थोड़ो घणो खागे बिंगा बाद में अपन ने छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के बाद में भी आपा तुरंत प्रभाव छू स्नान करा, कपड़ा चोखी त्रियाँ गर्म पानी के माँ धोवा। ए छोटी छोटी सावधानी है अना अपने अगर आप अपना लेंगा अपने व्यवहार में रखांगा तो कभी भी जीवन में जिकी अप्रिय घटना आप कई बरियाँ सुना के छिड़काव करता टाइम दुर्घटना घटित होगी और कई बरियाँ देखा कि भई मौत भी हो जाए। छिड़काव के बाद में जे फिर भी इतनी सावधानियों के बाद भी अगर कोई उल्टी जिसो महसूस हुआ है जिदोरो हुआ है तो तुरंत आप डॉक्टर छू संपर्क करा। ए छोटी छोटी सावधानियाँ रखांगा तो अप्रिय घटनाओं बचे रहांगा। बता चीता और आगे कर सुन लें एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनियो गीत, बात किसानी की करिए आपां पहला, पशुओं पर भी आपनों ध्यान देनो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और विशेषकर पशुओं ने जिका समय समय पर अनेक तरीके का संक्रामक रोग लग है बां वास्ते आपने सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि आंगे कारण पशुओं की मौत भी हो जाए और जिको आंगी उत्पादन क्षमता है बिंग में भी कमी आमता आप देखिए। पशुओं में बीमारी होने से पशुओं पर आपनों खर्चो बढ़ जाए, अपना रिपिया जी का है वह एड़ा लग है, इन वास्ते पशुओं ने अनेक तरीके की जी बीमारियां बने बचाने वास्ते आप टीकाकरण जरूर करावा। रोग निरोधी और समय के अनुसार टीकाकरण पशुओं की रक्षा आप संक्रामक रोगों से कर सकें और बांगी रोकथाम कर सकें। पूरी सुरक्षा देन करण वास्ते आप वैक्सीन को उपयोग करा, संक्रामक रोगों से आप बचा सकें। सामान्य जिका संक्रामक रोग हुए बांगे प्रति निश्चित उम्र और निश्चित समय हुए इंगे अंतराल पर आपने टीकाकरण कराना चाहिए। रोग की जिकी व्यापकता है, जिकी रोग बढ़ है बिंग आधार पर टीकाकरण कार्यक्रम अनेक तरीके से हुए और आपने जिया मानव जाति है मनुष्य वास्ते जिया टीकाकरण हुआ बी यही पशुओं में भी रोग प्रतिरक्षा वास्ते टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कई टीकाकरण इं कौन करावे, क्योंकि अलग अलग तरीके की कई भ्रांतियाँ जी की है वह फैलेड़ी है। एक तो कवे के टीकाकरण शू जी की है बा दूध को उत्पादन कम हो जाए, पशुओं में गर्भपात होने लग जाए, मुफ्त को टीको काम कौन करे, बारी बारी टीकाकरण की जरूरत ही कौन हुए, ये भ्रांतियाँ हैं। कई किसान भाई इं कवे या पशुपालक है जी का भाई इं कवे क्या आपने पशु तो बीमारी कभी लग ही कौन तो टीकाकरण आप करावा क्यों। अपनी जिकी सरकार है वे जिका पशुपालन विभाग है बांशु गंभीर बीमारियां वास्ते निःशुल्क टीकाकरण हुए, क्योंकि बने ध्यान है कि ए टीका लगाया छू आगे जे भविष्य के अंदर इसी कोई बीमारी को जिको प्रकोप आवे जिकी संक्रामक बीमारियां है बांशु आप पहले ही बचाव कर लिया। तो वह जिका अपना पशुपालन विभाग है बिंगमा जिका अपना वैज्ञानिक बैठे वह इन चीज़ पर शोध कर रखी है कि यह बीमारियाँ किया भी आ सके और की भी उम्र में आ सके, तो पहले ही जे आगो टीकाकरण करा देवा तो पशु जी को है वो उम्र भर बच्चे और वह को, तो यह भ्रांतियाँ हैं वह अपने मिटानी चाहिए। टीकाकरण से लाभ बहुत है क्योंकि पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम वास्ते टीकाकरण सबसे उत्तम विधि है। टीकाकरण से पशुओं के शरीर में बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, पशुओं ने अनेक तरीके का जिका एक संक्रामक रोग हुआ है बांसु सुरक्षा मिल जाए। टीकाकरण करण से पशु की खुद की प्रतिरक्षा की जिको तंत्र है वो मजबूत हो जाए, जिके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, जिके ना आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कवा। कई रोग ऐसा हुआ है जिका लक्षण कई पशुओं में मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के कारण दिखाई कौन देवे, लेकिन जिये ही पशु कमज़ोर हुए बी बीमारी जी को है बामुखर हो जाए और पशु ने कमज़ोर करके बिना ख़त्म कर दिया, तो बी वास्ते टीकाकरण कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुन लें एक और गीत।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनियो गीत, आप बात करा पशुओं में टीकाकरण की। कई छोटी छोटी बातें हैं जिकन आप जिके भी पशु आप टीकाकरण करवाना है तो आप ध्यान में रखा कि टीकाकरण से कम एक सप्ताह पहला पशुओं ने कृमिनाशक जी की औषधि हुए बा देगे और कृमि मुक्त कर देवा। टीकाकरण जिको है पशु को आप करवाना है और वो पशु स्वस्थ है तो कई बरिया जी रोगी पशु है तो बिंगे संपर्क में ना आने देवा। स्वस्थ पशु ने अलग रखा और रोगी पशु ने अलग रखा। जिका भी डिस्पोजल सिरिंज है सुई है बंग उपयोग करा और चमड़ी के नीचे या मांसपेशियां में ही अपा टीको लगवाना है। वो भी सुनिश्चित करा कि टीके को उपयोग की जी की अवधि है बस समाप्त ना हो डी हुआ बिना चौकी तरिया जांच ले मार बिंग कोल्ड चेन हुए बिन ठंडो रखो जावे बा ना टूटेड़ी हुए। टीकाकरण सारणी की सही अनुपालना टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुए। जी हिसाब सारणी हुए भी हिसाब ही टीका आप लगवाना है। करणों के कोनी टीकाकरण के दो सप्ताह बाद तक यानी कि आज टीको लागू है तो इंगे 15 दिन बाद तई पशुओं ने अनावश्यक जी को तनाव हुए वो ना देवा। रोगी दुर्बल या बुढ़ो जो कोई पशु है तो बिंगो टीकाकरण आपने नहीं कराना चाहिए। टीकाकरण के बाद में 2 सप्ताह तक पशुओं ने उपचार वास्ते आप एंटीबायोटिक औषधियाँ या कृमिनाशक या प्रतिरक्षा दमनक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल कौन करना यानी इसी दवाइयाँ कौन देनी जिके बन गए शरीर ने आप तकड़ो बनाने वास्ते दे दें कई बरियाँ के बई तो बढ़िया हुआ है। टीकाकरण के बाद में 2 हफ्ता तई आपने पशु ने तनाव कोई तरीके को तनाव देना ही कोनी। एर जी को ग्याबिन पशु है यानी कई गायें हैं भैंसें हैं बकरी है बन है जिकी ग्याबिन है बंग है अंतिम जी का दिन हुआ ब्याण का भी समय के अंदर टीकाकरण बिल्कुल भी कौन करवाणो कोई तरीके को टीको बंग है नहीं लागनो चाहिए। संक्रमित या रोगग्रस्त जी का पशु है बंग टीकाकरण से आपने परहेज करना चाहिए। पहला बाने स्वस्थ करो बिंग बाद में बांगो टीकाकरण जी को है वो आपने करवाना चाहिए। जी हिसाब अपनी मानव जाति या आप अपने खुद पर लेवा जांच के आधार पर या आपने कोई भी रोग हुए तो आप जांच करवावा। आजकल देखा कि गर्भस्थ जी की महिला है बिंगो शिशु जद गर्भ में हुआ जद शू टीकाकरण शुरू हो जाए बस बागी बा सारणी आप पशुओं में रखनी है बी तरीके से ही आप टीकाकरण करवाना है। और पशुओं ने स्वस्थ रखने वास्ते टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये टीकाकरण से ही पशु जी को है वो रोग मुक्त रहे बिंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और जब रोग मुक्त पशु रहेगो तो बिंगो जी को उत्पादन की क्षमता है वह भी बढ़ेगी बिंगो उत्पादन घटे कोनी बिंगो उत्पादन बढ़े। और विशेषकर जिका किसान भाई करवाण लग रहे बे बात ने प्रचारित भी करे जिकी भ्रांति है बने लोगों ने समझा के दूर करे जिका किसान भाई भ्रमित होए डे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए फिल्म संगीत सुने। आगाज करें प्रोग्राम का साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने के साथ, जिसे स्वरबद्ध किया संगीतकार रवि ने, आवाज थी लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है एक महल हो सपनों का।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। इस गाने को लिखा गुलजार ने, संगीत हेमंत कुमार ने बनाया, आवाज लता मंगेशकर ने दी और फिल्म है

अभी आपने गुलजार का लिखा गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में ही कार्यक्रम का अगला गाना सुने। इस गाने को लिखा साहिर ने और धुन रवि ने बनाई।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है, 8 बजा चाहते हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र

एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसईटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंग कीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में

चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 8:15 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में चूंकि दिन राजेंद्र कुमार का सफिल्म उन्हीं की, और ये कहने की कोई बात नहीं कि राजेंद्र कुमार की फिल्मों के गाने उन्हें जुबली कुमार बनाने में कितने सहायक उनके रहे। आज जो फिल्म है अनजाना, इसे मोहन कुमार ने बनाया, स्क्रीन प्ले राजन बोस का, कलाकार बबीता राजेंद्र कुमार के साथ, इसके अलावा प्रेम चोपड़ा और प्राण इस फिल्म में गाने फिल्म के इतने प्यारे कि ज्यादा वक्त बातों में न लगाएं, वो गाने सुनें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संदेह से पहले आपने मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आज की फिल्म अनजाना का गाना सुना। गाने आनंद बख्शी, लिखे धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए आखिरी प्रोग्राम सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज़ों में ये गाना।

आज अनजाना फिल्म के गाने सुने। हम अपने सुनने वालों को बता दें, रात 10:13 पर आप कुछ फिल्मी गाने सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है, मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो जहां आज हमारे साथ होगा फुटबॉल का जुनून, फीफा का समापन और क्रिकेट के मैदान पर भारत ने क्या पाया और क्या खोया। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बना, फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को फीफा विश्व कप की गोल्डन बॉल और फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन आज से चीन में शुरू। मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। और PV सिंधु कल से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती दिखेंगी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा के साथ, जिसका शानदार समापन कर न्यू जर्सी स्टेडियम में हो गया है एक शानदार और रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन के लिए सब्स्टिट्यूट फोरान टोरोस ने उनकी जीत के हीरो बने, जिन्होंने अतिरिक्त समय में मैच का निर्णायक गोल करते हुए टीम को 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया।
1: In 2026, the champions of the world are Spain. Viva España! The best team has won it, and the best player the world has ever known leaves in tears. This time, the party belongs to someone else. This is a Spanish summer night.
2: न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में तनाव और रोमांच अपने शिखर पर नजर आया। इस कड़े मुकाबले के निर्धारित 90वें मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल दागा। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिली गेंद को नियंत्रित किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज से बचाते हुए एक बेहतरीन गोल किया।
1: And thundering for Spain by Ferran Torres! At long, long last, Spain's magic moment!
2: इसी के साथ स्पेन की टीम ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन ने लंबे समय तक बॉल पर अपना कब्जा बनाए रखा और पूरे फाइनल में बेहतर मौके बनाए, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने बार बार स्पेनिश टीम के हमलों को नाकाम किया। वहीं अर्जेंटीना साफ सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई और कप्तान लियोनेल मेसी को स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने काफी हद तक रोके रखा। मौजूदा चैंपियन को नॉर्मल टाइम के स्टॉपेज टाइम में बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया, जिससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अर्जेंटीना की टीम में 10 खिलाड़ी रह गए। मुकाबले में 106वें मिनट में आए टोरेस के गोल के बाद स्पेन ने दबाव बनाना जारी रखा। इस बीच टीम को लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन गोल से पहले फाउल होने के कारण उस प्रयास को अमान्य करार दिया गया। हालांकि लुइस डे ला फुएंते की टीम ने संयम बनाए रखा और आसानी से मैच के आखिरी पलों को बिताते हुए अर्जेंटीना के विश्व चैंपियन के दौर को खत्म कर दिया। ये जीत स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का समापन थी। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही और साल 2010 की अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो स्पेन एक ऐसी टीम बनकर उभरी जिसने अपने मजबूत डिफेंस को अपनी ताकत बनाया। विश्व कप के 8 मुकाबलों में महज एक गोल खाते हुए ये टीम फुटबॉल की नई विश्व विजेता बन गई है। मैदान पर तनाव दिखा दोनों टीमों के बीच, दोनों टीम के

0: जो रोहित शर्मा रहे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि विजिटिंग कंट्रीज में उन्होंने सबसे ज्यादा शतक बना लिए हैं। इंग्लैंड में उनके 8 शतक हो चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जो यूएई में उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं किस ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। अभी डेविड वार्नर से वो पीछे हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं।
1: जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने खुद अपनी पारी के बारे में क्या कहा, इंग्लैंड की धरती पर उन्हें खेलना कितना पसंद है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं।
2: I love playing in England. There's no doubt about it. The atmosphere, ground, the pitches. You know, when you turn up here to play any sort of format, it challenges you in different ways. That's what, as a cricketer, you want to be challenged all the time. I had my time in the middle. I enjoyed it.
1: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी हिटमैन की पारी की प्रशंसा की है। आइए सुनते हैं शुभमन गिल ने क्या कहा।
3: जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग दिन। हमारी जो बातचीत थी मोस्टली ये हो रही थी अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा है कि नई बॉल से मारना उतना ईजी नहीं है। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और

0: अपनी पारी के बारे में क्या कहा, इंग्लैंड की धरती पर उन्हें खेलना कितना पसंद है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं।
1: I love playing in England. There's no doubt about it. The atmosphere, ground, the pitches. You know, when you turn up here to play any sort of format, it challenges you in different ways. That's what, as a cricketer, you want to be challenged all the time. I had my time in the middle. I enjoyed it.
0: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी हिटमैन की पारी की प्रशंसा की है। आइए सुनते हैं शुभमन गिल ने क्या कहा।
2: जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की, बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग देम। हमारी जो बातचीत थी मोस्टली ये हो रही थी, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा है कि नई बॉल से मारना उतना ईजी नहीं है। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार।
0: हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि आप कितने भी रन स्कोर बोर्ड पर बनाते जाइए, आपके लिए जो नीड्स वाला कॉलम है, जो और बनाने वाला कॉलम है, वो हमेशा उससे बड़ा नज़र आता है। जिस तरह की ये पूरा दौरा भारत के लिए गुजरा, पहले आयरलैंड से 2-0 की हार, फिर इंग्लैंड से T20 श्रृंखला में हार, कुछ पॉजिटिव क्या भारतीय टीम अपनी 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में यहाँ से लेकर के आ पाई है?
3: शक्ति, 2027 की तैयारियों की बात करें अगर, तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से फॉर्म में आ गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस, कमिटमेंट और फॉर्म पर जो चर्चा हो रही थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। भारत की कई कमियां भी सामने आई हैं, जिसके चलते अब भारत की ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उनको किन किन चीज़ों पर काम करना है। जैसे मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो लगातार हो रहा है, 4-5-6 नंबर में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे एक दृढ़ता नज़र नहीं आ रही है। बुमराह के अलावा भी टीम को कुछ एक्सपीरियंस बॉलर्स की जरूरत है, जिसके चलते वो एक प्रेशर बना पाए सामने वाली टीम पर और स्पिन पर और भरोसा जो है जताना होगा।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ सीख लेके ये युवा टीम जो है, एक कॉम्बिनेशन है युवा और एक्सपीरियंस टीम का, वो आगे बढ़ेगा और अपनी तैयारियों को और धार देता हुआ नजर आएगा। और अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज का। भारत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल, पिस्टल, शॉटगन के लिए 36 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। आज से 29 जुलाई तक चीन के हांगझाऊ में चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे।
4: भारतीय दल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं में आशी चौकसे, विदर्शा के विनोद और सिप्त कौर सामरा हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि, संयम और ईशा सिंह तथा पुरुषों में केदार लिंग बी, उचाग नवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल हैं। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत तथा पुरुषों में अनीश भनवाला, ओंकार सिंह और भावेश शेखावत को चुना गया है। शॉटगन इवेंट्स में उदावीर सिंह जाजी, भवनीश मेंदिरत्ता और विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप इवेंट में हिस्सा लेंगे। महिलाओं में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे। पुरुषों के स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखो शामिल हैं, जबकि गनीमत सेखो, दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर महिलाओं की टीम का हिस्सा हैं। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, वहीं महिलाओं में इला वैनिल, वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पडेकर भाग लेंगे। इसके अलावा भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स में भी टीम उतारेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां जापान ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं और उन्नति हुड्डा कल पीवी सिंधु से ही अपना पहला राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स की बात की जाए तो वहाँ पर लक्ष्य सेन, युवा आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम में हैं। पुरुष डबल्स में सबकी नज़र MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर होने वाली है, क्योंकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शोटी की जोड़ी जो है उसको जापान ओपन के बीच में ही कुछ चोट के कारण हटना पड़ा था। और अपनी ऐतिहासिक जीत पर पीवी सिंधु ने खुशी भी व्यक्त की है कि वो आगे इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए नजर आएंगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है।

0: प्रधानमंत्री ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा

0: बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। रात के 9:15 हुए हैं, आइए कार्यक्रम सुने सुगम संगीत। कार्यक्रम में पहले सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में पयाम सईदी की गज़ल कि तेरे आने की जब खबर महके, क्षमा करें, पयाम सईदी की ये गज़ल कि हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, जिंदा तो हैं जीने की अदा भूल गए हैं। आइए सुनें।

अभी आपने पयाम सईदी की गज़ल सुनी, आवाज़ थी जगजीत सिंह की। आइए जगजीत सिंह के साथ चित्रा सिंह को सुने गज़ल, इस बार निदा फासली की, कि कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल न पाएंगे हम, ऐसा लगता है। आइए सुनें।

अभी आपने जगजीत सिंह के साथ लता मंगेशकर को सुना। आइए आखिरी प्रोग्राम जगजीत सिंह की आवाज़ में कतल शिफाई की ये गज़ल सुने कि अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भारत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2331-0481-0111-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेज होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी ज़रूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फ़ोन करेंगे और उनके मन में कोई जार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज़ करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपये वहाँ शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया

0: आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना।
1: जी
0: तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज़ जो मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा, एक फॉर्म 26AS होता है,
1: जी
0: मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी
1: जी
0: इनकम से, तो उसको ज़रूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई
1: जी
0: प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए,
1: जी
0: कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने
1: जी
0: जरूरी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इंफॉर्मेशन और ये फिगर कहाँ से ली है।
1: जी
0: तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी पर अगर टीडीएस कटता है तो आईटीआर इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपये तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है। लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी
3: हाँ, नमस्कार
1: नमस्कार
3: सर, कोहली सर का नमस्कार।
0: हाँ,
3: सर
0: नमस्कार अमित जी,
3: सर
0: नमस्कार।
3: मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा जी।
3: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर, मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ,
0: जी
3: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ।
0: जी
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूँगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है या डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर ज़रूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपये से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स

0: करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं। और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको, आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए।
0: और मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सिर्फ ये है कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है, आप उसको

0: दिख सकता
1: ये
0: है,
1: बात एकदम सही कह रहे हैं। हर साल हम लोग भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में एक संशय
0: डाउट
1: रहता है,
0: रहता
1: डाउट
0: है।
1: रहता है कि
0: जी
1: कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए,
0: जी जी
1: तो उस चीज़ में
0: और मैं
1: डिडक्ट हो
0: उसी पे
1: जाता
0: आ
1: है
0: रहा
1: उससे।
0: था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह
1: जी
0: सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी
2: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो
0: जी
2: उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है,
0: जी
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 30-25 लाख तक पहुंच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा,
1: जी
0: तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी। तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द मैं
1: जी
0: ठीक समझ रहा हूँ अगर,
1: बिल्कुल
0: तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है,
0: जी
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: जी
3: इसके
0: जी
3: बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर। थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था ATTTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाज़त हो फरहत तो इसमें इसमें कुछ अश्विनी इजाज़त दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, था, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं। जब छोटा

0: होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज़्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
3: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर है
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको, जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये है, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्सपेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्सपेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है NPS, उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश करता हूं।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं।
1: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहाँ पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में 2-3 कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये शख्स जो हैं भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहाँ पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम

0: लिए उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहाँ पर भी इनकम है फरहद, वहाँ
1: जी
0: पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: जी। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं
0: जी,
1: और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है
1: जी
0: और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत ज़रूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी,
1: हाँ,
0: तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी है तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
2: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सब प्रेम,
1: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
2: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है, या क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हो एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से, रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना। आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया, और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेहरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये हृदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती, और वो गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियाँ को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूँगा इसमें कि कोई अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
3: नहीं ठीक करता, और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो हो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
3: की गलत है, लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं, और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए, तो शायद आप गलती करने से बच जाए।

0: ठीक है। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार
1: सभी पैनल को नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी जो यूजर आईडी से ही होता है जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया।
2: तो
1: अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने वाला।
2: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेन डालें, और सीपीसी बैंगलोर है उसके फ़ोन नंबर भी हैं, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है। तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
0: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर मैं जानना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है, मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
0: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
2: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न्स आ रही हैं आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर लें।
0: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
0: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
2: शुक्रिया।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और आपने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज़ नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो ज़रूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है, रात के 10 बजे हैं, थोड़ी देर में आप संसद में आज हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे।
6: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाई फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
7: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
8: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ

0: मुझे सभा को अपने छह पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में
1: सतीश करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
0: 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी,
3: इसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन 2 सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति।
1: माननीय सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है।
2: मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल,
3: प्रश्न नंबर एक।
4: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
5: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के डोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत को जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण स्वयं दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सब से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके।

उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख

0: और उसमें से 3,74,000 आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि आपको लोकल लैंग्वेज भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी एक कार्य में शामिल करके उसको भी उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:13 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोहिता शर्मा की ओर से दोस्तों आज का दिन राजेंद्र कुमार का दिन, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से आप जानते हैं। राजेंद्र कुमार के हिस्से में ऐसे गीतकारों के, ऐसे संगीतकारों के गीत आए, ऐसी आवाजें उनको मिली जिनकी वजह और उनके अभिनय के कारण आज भी हम सब लोग उन्हें याद करते हैं। आज के दिन अपने विभिन्न केंद्रों से राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गाने सुने। इसी कड़ी में आकाशवाणी सूरतगढ़ से आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आगाज करें प्रोग्राम का इस गाने के साथ और इस बात के साथ कि फूलों में गजल रखना ये रात की रानी है। फूलों में गजल रखना ये रात की रानी है, इसमें तेरी जुल्फों की बेरब्त कहानी है। और एक ज़हन परेशान में वो फूल सा चेहरा है, पत्थर की हिफाजत में शीशे की कहानी है।

दोस्तों, अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा ये गाना सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और मौसीकी इस गाने के लिए शंकर जयकिशन ने बनाई। राजेंद्र कुमार जब इन गानों पे अभिनय करते तो यकीनन यूँ महसूस होता कि जैसे इस गाने को खुद राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, या मोहम्मद रफ़ी का कमाल या राजेंद्र कुमार के अभिनय का कमाल। बहरहाल, अगला गाना हम सुनेंगे जिसे शकील बदायूं ने लिखा। रवि ने इस गाने के लिए संगीत बनाया, मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी, और बात ये कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे और चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।

ये खूबसूरत गाना आपने सुना जिसे शकील बदायूं ने लिखा, रवि ने इस गाने को रचा अपने संगीत में। अगला गाना हम सुनेंगे राजेंद्र कुमार पर फिल्माया कविराज, शैलेंद्र का लिखा। गाने के लिए मौसीकी तरतीब दी शंकर जयकिशन ने और आवाज वही जो हम सबके दिलों में बसते मोहम्मद रफीक की। बात इतनी के साथ कि इन पत्तों ने गर्मी भर साए में हमें रखा, अब टूट के गिरते हैं बेहतर है जला देना, और अब दूसरों की खुशियां चुभने लगी आंखों में, अब दूसरों की खुशियां चुभने लगी आंखों में, ये बल्ब बहुत रोशन है इसको बुझा देना।

पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। ये बोल थे शैलेंद्र के। अब जो गाना हम सुनेंगे, इस गाने को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन ने संगीत बनाया, मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर ने गाया। गाने में शब्द जुनली, जुनली रात यानी पूरे चांद की रात, पूर्णिमा की रात। बात इतनी के साथ ये गाना आपको सुनवाएं कि फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल उसके नाम और सही, और उसकी जुल्फें बहुत घनेरी है, एक शब का पयाम और सही।

ये संगीत सचिन देव बर्मन का, जिस पे आप अभी थिरके या थिरकने का मन आपका हुआ। बहरहाल आनंद बख्शी का एक मीठा सा गाना सुने। लक्ष्मी प्यारे ने अपने संगीत से इसकी मिठास और बढ़ा दी। बात इतनी के साथ ये गीत आप तक पहुंचे कि धूप खेतों में बिखर कर जाफरानी हो गई। धूप खेतों में बिखर कर जाफरानी हो गई और सुरमई अशजार की पोशाक धानी हो गई और नर्म टहनी धुंध की यलगार को सहती हुई। नर्म टहनी धुंध की यलगार को सहती हुई शाख की बाहों में आकर जाबितानी हो गई।

आनंद बख्शी ने गाने में बहार को परिभाषित किया, आपने सुना। बहरहाल गाना अकलाम सुने जिसे मोहम्मद रफ़ी के साथ मुबारक बेगम ने गाया, हसरत ने लिखा और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई। गाना आप सुने बात इतनी के साथ कि जब शहर चुप हो हंसा लो हमको, जब शहर चुप हो हंसा लो हमको, जब अंधेरा हो जला लो हमको, और हम जमाने के सताए हैं बहुत, अपने सीने से लगा लो हमको।

श्रोताओं, ये गाने इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। दिन मना रहे हैं जयंती का, जुबली कुमार राजेंद्र कुमार का। गाना अब आप सुनेंगे शकील नौशाद की जोड़ी का, जिसे मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के युगल स्वर में आप तक पहुंचाएंगे। बात ये कहें डॉक्टर बशीर बद्र की कि सात रंगों के शामियाने हैं और दिल के मौसम बड़े सुहाने हैं, कोई तदबीर भूलने की नहीं, याद आने के सब बहाने हैं।

मेरे महबूब, आपने ये गाना सुना दोस्तों? हसरत जयपुरी के खूब गाने राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बनाने वाले हैं। एक ये गाना सुने आप, मोहम्मद रफी का गाया, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, कि अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया और जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया, और सुबह विसाल पूछ रही है अजब सवाल, वो पास आ गया कि बहुत दूर हो गया।

प्यार आंखों से जताया तो बुरा मन गए। गाना आपने सुना, अब जो गाना आप सुनेंगे हसरत का, ये गाना सुनकर देखिए कितना प्यारा है कि नाम उसी का नाम सवेरे शाम लिखा, शेर लिखा या खत उसको गुमनाम लिखा, और सात जमीने एक सितारा नया नया, सात जमीने एक सितारा नया नया, सदियों बाद गजल ने कोई नाम लिखा।

दोस्तों, प्रोग्राम अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच चुका है। गाना एक और सुनेंगे हसरत का, कितना प्यारा है ये आप सुन के देखें कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, उस साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। और उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट कर मोहब्बत के जमाने नहीं आते।

प्रोग्राम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए, बात इतने के साथ कि अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, और जो सख्त बात सुने तो दिल टूट जाता है, इस आईने की नज़ाकत किसी को क्या मालूम। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, की आकाशवाणी सूरत गढ़े, रात के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा

0: कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the